0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। ये हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम,

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए। लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: Sarvar School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। बचपन हर गम से बेगाना होता है, गीत गाता चल का ये खूबसूरत गाना वाकई बहुत कुछ कहता है ये गाना। इस पिक्चर को जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी यादें ताजा हो जाती हैं। और सच बात तो ये है कि बचपन, बच्चों के साथ हम खेलना चाहते हैं, और जब हम कोई बड़े व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं ना कि इसका बचपना अभी गया नहीं है, कोई नहीं चाहता कि किसी का कोई बचपना चला जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान खुश होता है और खुश रखने की कोशिश करता है अपने बचपने के ज़रिए। और जब हम बच्चों को देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को देख के हमें खुशी मिलती है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन और इस आंदोलन की एक शुरुआत जो रही है 1980 में, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना इन्होंने 1980 में की थी। इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हैं सहना प्रियदर्शनी जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं दिल्ली ऑफिस से, साथ ही साथ हैं अजीत सिंह रावत जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, आप भी दिल्ली से हैं। तो सहना जी, आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: अजीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद गगन जी।
1: कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के बारे में मैं जानना चाहूंगा, इनके बारे में थोड़ा बहुत जो मैं रिसर्च कर पाया, वैसे हमने बहुत देखा है इनको, सुना है। एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध आप पक्षधर रहे हैं, और ये हमेशा बच्चों के हक की बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, हेल्थ की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो। तो सबसे पहले सहना, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो फाउंडेशन है, ये जो संस्था है आपकी, किस तरीके से काम करती है?
2: तो ये फाउंडेशन जो है, हम लोग जो है बाल अधिकार को लेकर सबसे ज्यादा काम करते हैं। बाल अधिकार का सुनिश्चित होना जो है एक कैलाश सत्यार्थी जी का एक विजन रहा है हमेशा, कि अगर दुनिया या फिर आगे का फ्यूचर तभी वो सेफ है जब एक बच्चा जो है वो सेफ होगा, क्योंकि वही जो है आगे यूथ बनेगा और आगे वो काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। तो उसी को लेते हुए कैलाश जी का ये विजन रहा है और उसी को हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी पे काम करता है, जिसको लिए हमारा अलग अलग तरीके के काम है बच्चों के साथ, जिसमें एक है हमारा बाल मित्र ग्राम जो कि शुरुआत हुई थी सुमेधा जी की तरफ से, जो कि उनकी वाइफ हैं सर की, उन्होंने जो है ये शुरू किया था। हमारा सबसे पहले राजस्थान से ये शुरू किया है, उसी तरीके से अभी हमारे बीच जो है, हम रूरल जहाँ पे सबसे ज़्यादा शोषण हो सकता है उस इलाकों में हम लोगों ने काम शुरू किया है वहाँ पे, जैसे कि झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हमारे अलग अलग जगह पे ये काम है। इसी तरीके से अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ हम लोगों का काम रहा है, जहाँ पे हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं एक बच्चे को लेकर, जिसमें हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, हमारा लीगल एड सेशंस हैं, लीगल एड डिपार्टमेंट है, और साथ ही साथ में हमारे विक्टिम असिस्टेंस का डिपार्टमेंट है और साथ में कैंपेन्स का है। तो एक ओवरऑल तरीके से हम एक कम्युनिटी को एक अवेयरनेस के थ्रू जो है और साथ ही साथ में इंटरवेंशन के थ्रू जो है हम काम करते हैं, ताकि हर बच्चा जो है सुरक्षित रहे। और इसी के साथ साथ एक और एस्पेक्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बाल अधिकार के साथ साथ चाइल्ड लीडरशिप की बात है, कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जो है एक बच्चा अगर बचपन से जानने और उसको फॉलो करने लगे तो वो आगे जाके एक अच्छा सिटीजन भी बन सकता है और वो जागरूक रहेगा। तो हमारे बाल मित्र प्रोग्राम में जो है बाल पंचायत बनते हैं, और इसी तरीके से हमारे बाकी अदर और प्रोग्राम से जहाँ पे बाल पंचायत बनते हैं, बच्चे जहाँ पे खुद नेतृत्व लेते हैं कि वो अपने इश्यूज और अपने जो भी इश्यूज है उसको लेकर आए।
1: कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि एक अवेयरनेस का प्रोग्राम आपकी संस्था करती है, लोगों के बीच में जाती है, बच्चों के हक की बातें होती हैं, और जिसमें कि आपने यहाँ जिक्र किया कि ट्रेनिंग सेशन होते हैं, एक कैंपेन आप लोग चलाते हैं, कानून की जानकारी भी उनको दी जाती है, बाल पंचायत आप लोग एक बनाकर चलते हैं जिसमें कि बच्चों को ही किसी को लीडर बनाया जाता है और उनके साथ बच्चे ही जुड़े हुए होते हैं। आपने बातों बातों में मुझे बताया कि सहना कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि इस एरिया में या इस क्षेत्र में बच्चों का शोषण हो रहा है, तो क्या कोई आपकी एक टीम है जो रिसर्च करती है कि हमें वहाँ जाना है, हमें पता चला है कि वहाँ बच्चों के जो अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है? अजीत, इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगा।
3: हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि संगठन अवेयरनेस पे, जागरूकता पे काम करता है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ ग्रास रूट इंटरवेंशन, और जब हमें ऐसी कोई लीड मिलती है या हम कोई ऐसी एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ हो सकता है कि बच्चे आश्रम में लिप्त हो, तो उसके लिए हमारी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है बचपन बचाओ आंदोलन, तो उसका एक टीम है रेड एंड रेस्क्यू। तो जितने भी इंटरवेंशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के पुलिस विभाग हो गया, DM हो गया, उनके साथ मिलके रेड एंड रेस्क्यू का भी हम इंटरवेंशंस करते हैं शहरी क्षेत्रों में और सेमी अर्बन सेटअप में, इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी।
1: जी जी, वाकई बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई कि आपकी जो संस्था है बचपन बचाओ आंदोलन, और ये आप हमें बहुत डिटेल में विस्तार से बता रहे हैं। साथ ही साथ जब मेरी सहना जी से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि बाल मित्र ग्राम की भी शुरुआत, जो कि कैलाश सत्यार्थी जी की जो धर्म पत्नी है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कुछ और सवाल है, हम इसके बारे में आपसे जानेंगे जरूर, मगर यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
4: नहीं नहीं राहुल, ये गाना मत गाओ।
5: गाने दीजिए ना, गाओ बेटे, यही गाना गाओ, गाओ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। एक ऐसा नाम जो कि भारत में तो जाना ही जाता है, विश्व पटल पर भी जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है। उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि हर घर घर में उनका नाम है। साथ ही साथ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार से आपको नवाजा गया था। आप हैं कैलाश सत्यार्थी जी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनकी संस्था के बारे में बातें हो रही हैं। और इसी संबंध में बात करने के लिए मेरे साथ दो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, उनके इस क्षेत्र से आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं सहना प्रियदर्शनी और अजीत सिंह रावत। एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो बात करते हैं कि कुछ चैलेंजेस आते होंगे। जाहिर सी बात है कि किसी काम को आप धरातल पर लेकर जा रहे हैं, आसानी से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं है। मैं उन चैलेंजेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि कितनी दुश्वारियाँ आपके सामने आती हैं, उन दुश्वारियों का किस तरीके से आप लोग सामना करते हैं। सहना प्लीज आप बताएं।
2: जी, जैसे कि आपने कहा कि कोई भी काम या फिर सोसाइटी में अगर किसी भी बदलाव की बात करें तो एक स्लो प्रोसेस, और साथ ही साथ में उसके अपने ही बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। उसी तरीके से बच्चों के साथ शोषण हो गया हो, ये काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और होता आ रहा है। तो उसको चैलेंज जब करते हैं, जैसे कि हम, मैंने इससे पहले बताया था कि हमारा एक टीम है रेड एंड रेस्क्यू का, जिसमें हम लोग बच्चों को अगर वो चाइल्ड लेबर में लिप्त हो तो उनको हम जो है वहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं उन जगहों को, और उन बच्चों को वहाँ से

0: छुड़ाकर जो है हम उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लेकर आते हैं। तो जहाँ पे भी जब भी ये रेड एंड रेस्क्यू हम लोग करने का कोशिश करते हैं जहाँ पे भी, वहाँ पे इतनी सारी चैलेंजेस आती है कि वहाँ का लोकल कम्युनिटी अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कि वो हाथ में पत्थर हो गया या फिर अन्य जो चीज़ें हैं जिसमें चोट पहुँचा सके, तो ऐसी भी सिचुएशन आई है जहाँ पे हम लोगों ने फेस किया है। उस दौरान उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे अदर प्रोग्राम है बाल मित्र ग्राम, जहाँ पे हमारा कोर है कि हम बच्चों को जो है एक माइका माइनिंग एरिया है झारखंड में, वहाँ पे हम काम करते हैं। बच्चे वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वहाँ पे जगह होते हैं जहाँ से माइका निकाला जाता है, बच्चों को उसमें धकेला जाता है, और कई बार ऐसा हुआ है कि कई दफ़ा कि वो धस गया हो माइका माइन और बच्चे की जो है जान वहाँ पे चली गई हो। तो इन सब के अगेंस्ट जो है कम्युनिटी कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं रखती है कि वो हम जो कह रहे हैं वो सही है। तो उस दौरान जो है हम रेगुलर काउंसलिंग सेशंस, रेगुलर रैपो बिल्डिंग और स्टेक होल्डर ग्रुप्स जो है जो कि वहाँ पे जो कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वहाँ के हम इन्फ्लुएंशियल लोग हो गए या ग्राम प्रधान हो गए, ग्राम पंचायत, आंगनवाड़ी, टीचर्स, इन सबको हम साथ में रखते हैं ताकि हम एक होलिस्टिक एक पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट चेंज कर पाएं जहाँ पे बच्चे को जो है सुरक्षित रख पाए। उसी तरीके से जब हम रेड एंड रेस्क्यू की बात करें तो हमारा लोकल गवर्नेंस जो है पुलिस हो गई या SDM हो गए उनको हम हमेशा साथ में रखते हैं
1: जी। तो साना अभी आपने बात की कि ट्रेनिंग सेशन की आप बात कर रहे हैं और रिहैबिलिटेशन सेंटर में जब आप बच्चे को लेकर जाते हैं काउंसलिंग आप लोग करते हैं, तो यहाँ जो काउंसलिंग की बात आप मुझे बता रहे हैं तो क्या हम बच्चों की काउंसलिंग कर रहे होते हैं या उसके माता पिता से भी हम लोग बात कर रहे होते हैं?
0: हमारी कोशिश ये रहती है कि पेरेंट्स से भी हमारी बातचीत हो, और क्योंकि बच्चे जो हैं उनकी भी साथ हमारी काउंसलिंग सेशंस होते हैं दोनों तरीके से। हम लोगों का ट्रेनिंग सेशन जो मैं कह रही थी, हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है वो अन्य हमारे जो वर्क से लोग आते हैं जैसे वो पुलिस हो गई, टीचर्स हो गए, आंगनवाड़ी हो गए वर्कर्स, या फिर और ज़्यादा अधिक हमारे जो अधिकारी लोग होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग करती है ताकि वो लोग सशक्त हो पाए या ऐसे सिचुएशन आए तो वो उस चीज़ में हैंडल कर पाए और बच्चों के लिए जो है द बेस्ट चॉइस जो है वो उस तब ले सकते।
1: जी जी अजीत, यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि रिहैबिलिटेशन सेंटर पर आप बच्चों को ले जाते हैं, कभी कभी बच्चा ये चाहता है कि नहीं मुझे मेरे घर ही जाना है, मुझे मेरे को काम ही करना है, मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना नहीं है। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि उसके जो माता पिता हैं वो भी चाह रहे होते हैं कि मेरा बच्चा कमा कर लेकर आए क्योंकि वही एक कमाई का जरिया है। कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी होती हैं, तो उस चैलेंजेस के बारे में मुझे बताएं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप लोग हैंडल करते हैं।
2: ये बहुत बेहतरीन आपने प्रश्न पूछा है, इसका मैं उत्तर आपको दो तरीके से दूंगा। पहला तो ये है कि जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर में टेम्परेरी मतलब जैसे रेस्क्यू किया है और वो बच्चा किसी और राज्य का है तो टेम्परेरी बेसिस में जो होम्स होते हैं या रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं उनमें रखा जाता है। उस दौरान बच्चे की एक काउंसलिंग सेशन किया जाता है जहाँ उसकी साइकोलॉजिकल उसको जाना जाता है और उसको भी तैयार किया जाता है कि वो मेन स्ट्रीम हो पाए, अपने घर जाए और शिक्षा मतलब इनरोल हो स्कूल में, अपनी शिक्षा पूरी करे। और इस स्थिति में जब पेरेंट्स से मिला जाता है, उनसे काउंसलिंग की जाती है, और अगर ये लगता है कि पेरेंट्स उनको रिटेन नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि बच्चा उस वल्नरेबल सिचुएशन में है कि वो दोबारा चाइल्ड लेबर में जा सकता है, तो उस स्थिति में कुछ लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी होते हैं जहाँ बच्चा अप टू 17 एज तक रहता है, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग भी मिलती है और साथ में जो एक मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उससे उसको कनेक्ट किया जाता है। दूसरी बात आपने ये कहा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है क्योंकि पेरेंट्स के पास आमदनी नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नोएडा में हम 10 कम्युनिटी और 10 स्कूलों में हम काम कर रहे हैं HCL फाउंडेशन के सपोर्ट के साथ। तो यहाँ हम जब बात करते हैं एक ग्रास रूट इंटरवेंशन की तो ना हम सिर्फ बच्चों को फोकस करके हम अपना इंटरवेंशन करते हैं बट उनके सराउंडिंग में जितने भी उनका सोशल प्राइमरी सर्कल है जिसमें उनके माता पिता आते हैं, उनके पड़ोसी आते हैं, आपके स्कूल के अध्यापक आते हैं और साथ ही जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे CWC, JJB, इन सबको हम इंगेज करते हैं। तो एक तरफ तो हम बच्चे को ट्रेनिंग और वर्कशॉप के माध्यम से उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट में काम करते हैं और साथ ही जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनसे हम माता पिता को कनेक्ट करते हैं ताकि उनको कुछ रोजगार का अवसर भी मिले और उन सिक्योरिटी स्कीम के तहत अगर कोई विडो है तो उनको विडो पेंशन मिलना शुरू हो जाए।
1: क्या बात है,
2: तो इसके साथ ही हम सस्टेनेबल इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं ताकि बच्चा 18 साल तक अपना एजुकेशन पूरा करे और वो किसी भी तरह के लेबर में इन्वॉल्व ना हो।
1: जिस उद्देश्य के साथ आप लोग चल रहे हैं, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है।
2: धन्यवाद।
1: सो लिस्टनर्स, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ये जो बातों का सिलसिला है लगातार जारी है, आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। एक खूबसूरत शेर है, खूबसूरत लाइन है कि मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और ये कारवां बनता गया। आज ये जो कारवां है वाकई बहुत बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा वट वृक्ष हो चुका है ये फाउंडेशन कि जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं। इनकी शाखाओं पर बैठकर बचपन झूल रहा है, इनकी शाखाओं पर पकड़कर बचपन आगे बढ़ रहा है, यानी कि बचपन बचाओ आंदोलन का जो एक मुहिम थी वो सच होता हुआ नज़र आ रहा है धरातल पर। कभी कभी हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे फाउंडेशंस होते हैं और सिर्फ लोग, मैं दोनों बात कर रहा हूँ, अजीत यहाँ पर और सहना भी जुड़ी हुई हैं, कि लोग कतराते भी हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे हैं, काम दिख रहा है, सराहना हो रही है, गवर्नमेंट आपको अवार्ड से सम्मानित कर रही है, आपके ऊपर फिल्में बन रही हैं। मैं फिल्म का यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, एक झलकी फिल्म मैंने आप लोगों की देखी थी जो कि कैलाश सत्यार्थी जी के जीवन पर आधारित थी कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से वो लोगों के बीच में जाते हैं और जहां बाल मजदूरी हो रही है वहां से बच्चों का रेस्क्यू करना, उनको लोगों की धमकी भी मिलना, चोटें भी आई हैं। तो वाकई मैं आपके काम को सराहता हूं, सैल्यूट करता हूं। और जाते जाते बस मैं ये थोड़ा यही जानना चाहूँगा कि किस तरीके से अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे, अपना करियर बनाना चाहे, कोई वॉलंटियर ही आपको अपनी सेवा देना चाहे, तो सहना आप मुझे बताएं किस तरीके से आपके साथ लोग जुड़ सकते हैं।
1: जी, जैसे कि अभी तक जो मैंने कहा कि हमारा मुहिम जो है या फिर हमारा ये पूरी कोशिश जो है, ये हम अकेले नहीं हैं। हम, जैसे आपने भी कहा, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग तरीके के काम हैं जिसको हम साथ मिलकर कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे साथ साथ में जुड़ के हमारे जो बाल मित्र ग्राम हो गया, या फिर हमारा जो काम अभी नोएडा में है हमारा, या फिर हमारे दिल्ली क्षेत्र में जो काम है, उन सब में वो आके अपनी तरफ से अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, या फिर बच्चों को जो है सशक्त कर सकते हैं उनके राइट्स के ऊपर। तो ऐसे काफ़ी सारे काम हैं जिसमें वो आके ज़रूर कर सकते हैं उसमें।
0: जी अजीत, आप मुझे बताएं कि अगर सपोज करिए कि बच्चे जुड़ गए, सहना ने जो बात हमें बताई, मैं उससे थोड़ा आगे बात कर लेता हूँ, किसी का इंटरेस्ट जाग गया कि मुझे समाज सेवा करनी ही करनी है, और जाहिर सी बात है कि मेरी फैमिली है, मुझे भी रुपये पैसों की आवश्यकता होती है क्योंकि रुपये पैसों से ही आखिर में घर चलता है। तो करियर की मैं बात आपसे जानना चाहता हूँ, ग्रोथ की बात आपसे जानना चाहता हूँ।
2: आपके इस प्रश्न के उत्तर को मैं दो आयामों से दूंगा। एक है कि अगर किसी को लगता है कि किसी बच्चे को वो देखता है और वो चाहता है कि उसको प्रोटेक्ट करे, लेकिन उसके पास टूल्स नहीं है, उसको समझ नहीं आता कि मैं कैसे कर पाऊँ, तो पहले तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस तरीके से देना चाहूँगा कि हमें कुछ हेल्पलाइन नंबर्स हैं। एक 1098 हेल्पलाइन नंबर है चाइल्ड लाइन का। आप अगर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं। और साथ ही संगठन का बचपन बचाओ आंदोलन का हेल्पलाइन नंबर है 1800102722। आप इन दो हेल्पलाइन का मदद ले सकते हैं। और अगर आपको कोई बच्चा किसी विषम परिस्थिति में या अकेले आपको दिखता है तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। आपका एक कॉल भी उस बच्चे की जिंदगी बदल सकता है, ये आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा।
0: बहुत
2: कुछ। और साथ ही अगर आप, आपका दूसरा प्रश्न था कि कैसे आप अपने करियर के शुरुआती दौर में कोई बच्चा है और वो चाहता है कि किसी कॉज से जुड़े और कुछ सीखने को उसे मिले और भविष्य में उसके कुछ आयाम खुले, तो आप एज वॉलेंटियर कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलाश सत्यार्थी जी और संगठन की अप्रोच रही है और सोच रही है कि कैसे पूरे विश्व को और समाज को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए, बच्चे को कम स्तर ना देखा जाए, उसके साथ एक दोस्ताना हम व्यवहार रखें, उसकी बातें भी सुने और ना कि उसमें हर चीज थोपे। तो उसके लिए हमारे पूरे संगठन का एक झुकाव रहा है यूथ में। तो अधिक से अधिक यूथ एज अ वॉलेंटियर, एज ए इंटर्न, और अगर उनका शिक्षा कंप्लीट हो चुकी है तो वो हमारे विभिन्न विभागों के साथ जुड़ सकता है। तो उसका एक प्रोसेस है, आप हमारी वेबसाइट के करियर वाले सेक्शन में जाके अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही एज अ वॉलंटियर आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरीके से आप दोनों ने अपने करियर की यहाँ शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि आप एक समाज सेवा ही कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों के घर में एक उजाला ला रहे हैं, किसी बिछड़े हुए बच्चे को उसकी माँ से आप लोग मिला रहे हैं, उसको आप शिक्षित कर रहे हैं, एक हेल्दी वातावरण आप लोग दे रहे हैं। तो आप दोनों को, आपकी संस्था को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
2: धन्यवाद गगन जी।
0: सो लिसनर्स, मेरे साथ जुड़ी रही सहना प्रियदर्शनी, आप थे अजीत सिंह रावत जो कि दोनों ही प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और जो कि कैलाश सत्यार्थी का जो फाउंडेशन है उस फाउंडेशन से आप लोग जुड़े हुए हैं। तो ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा, 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और कहने का आशय यही है कि जिंदगी वाकई बहुत बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। बहुत बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि किसी बच्चे को हम प्रताड़ित कर रहे होते हैं, उसको परेशान कर रहे होते हैं, हम ट्रैफिक सिग्नल पर जब हम देखते हैं कि बच्चे के हाथ में कटोरा होता है जबकि उसके हाथ में कागज कलम होनी चाहिए थी, वो पढ़ता लिखता आगे बढ़ सकता था। लेकिन जब ये संस्था, इसी तरीके की संस्थाएं काम कर रही होती हैं, तो निश्चित तौर पर एक खुशी मिलती है, एक अच्छा वातावरण ये लोग क्रिएट कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आप दोनों को धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। नमस्कार।

0: You got to
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Bingo और मलेरिया का दी एंड। चिकनगुनिया का दी एंड। दिमागी बुखार का दी एंड। ये
1: तारा तुम कर क्या रही हो? तारा
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
1: ओह

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
3: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: the station.
1: राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर एक खास संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज न करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएंगे और सही उपचार लेंगे तो यकीन मानिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी अपडेट के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: सुनो सुनो सुनो, सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीवी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
2: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
3: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा

0: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
3: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
2: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
3: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
2: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामो निशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आमतौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं बात हेल्थ की में। जी हाँ, अपने शरीर को जानना समझना बहुत बहुत जरूरी है। अपने शरीर को सुनने से आपको ये जानने में मदद मिलती है कि कब अधिक मेहनत करना है और कब आराम करना है, साथ ही कब आपको अपने पोषण में बदलाव करने की आवश्यकता है। आज इसी विषय पर मैं बात करने वाला हूँ। जी हाँ, अपने शरीर से कैसे बात करें, तो बात सामने आती है कि क्या आप अपने शरीर से बात करते हैं। इसकी तीन मुख्य चरण हैं। अपने शरीर को वास्तविक करुणा के साथ देखें, ये समझें कि ये सचेत कोशिकाओं से बना है जो भावनाओं का अनुभव करता है। आप दोनों के सहयोग करने और बीमारी पर काबू पाने की इच्छा के बारे में मानसिक बातचीत में अपने शरीर को शामिल करके विश्वास बनाएं। सुनिए, आपका शरीर कुछ बता रहा है। तो इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि बिना वजह वजन कम होना, थकान, बुखार, भूख न लगना, रात को पसीना आना, दर्द, खांसी और सर दर्द हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये लक्षण हमेशा विशिष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो आगे के मूल्यांकन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, इमेजिंग या लैब टेस्ट की जरूरत बता सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत आगे बात करते हैं और एक नया विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि रात भर सोकर उठने के बाद फिर सुबह क्या आपको सोने का मन करता है, ये एक अलग विषय है। और इस पर डॉक्टर ए के अरुण होम्योपैथी एक्सपर्ट कहते हैं कि हो सकता है कि रात में अच्छी नींद के बाद आपको सुबह सुबह फिर सोने का मन करे और फिर आप सो जाएं, फिर जब आप उठें तो आपका मूड भी खराब हो और आप थका हुआ भी महसूस करें। इसे स्लीप इनर्शिया कहते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है और ऐसा कई लोगों के साथ होता है। हर वक्त नींद आने की समस्या को हाइपरसोमनिया कहा जाता है। ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को हर समय नींद आती रहती है, खासतौर पर दिन में, जिस वजह से उनकी दिनचर्या भी प्रभावित होती है। ये समस्या ज्यादा शराब पीने, तनाव और अवसाद की वजह से भी हो सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने चिकित्सक से मिलें। किस विटामिन की कमी से नींद नहीं आती है? शरीर में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी के कारण नींद की समस्या आ सकती है। नियमित व्यायाम, धूप का सेवन और पौष्टिक भोजन करें। कोशिश करें कि हमेशा खुश रहें। तो ये खास जानकारी मैं आप तक पहुंचा रहा था डॉक्टर ए के अरुण हील इनिशिएटिव के माध्यम से। और ये आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सोनू शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। बात करते हैं बात हेल्थ की में, विटामिन सप्लीमेंट कितने सुरक्षित हैं। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि विटामिन और खनिज की खुराक लेना एक अल्पकालिक उपाय है। कुछ उच्च खुराक वाले अनुपूरकों के लंबे समय तक उपयोग से विषाक्तता के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप में कुछ विटामिन और खनिजों की कमी हो सकती है तो पूरक आहार लेने के बजाय अपने आहार और जीवन शैली में बदलाव करना बेहतर होगा। विटामिन आमतौर पर तब तक सुरक्षित होते हैं जब तक वो DRI दिशा निर्देशों के अंतर्गत पोषक तत्व स्तर प्रदान करते हैं। जब कुछ लोग पहली बार मल्टी विटामिन लेना शुरू करते हैं तो उन्हें आंत संबंधी दुष्प्रभावों का अनुभव होता है, लेकिन ये आमतौर पर जल्दी ठीक हो जाते हैं। अन्य दुष्प्रभाव दुर्लभ है। मल्टी विटामिन लेने से पोषक तत्वों की कमी या असंतुलन भी हो सकता है, क्योंकि एक पोषक तत्व का बहुत अधिक सेवन शरीर में अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण या उपयोग में हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिए, बहुत अधिक विटामिन सी आयरन के अवशोषण में हस्तक्षेप कर सकता है। आपको रोजाना कितने विटामिन की जरूरत है, ये एक विषय है। डॉक्टर AK अरुण कहते हैं कि 12 महीने तक के बच्चे को रोजाना 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की जरूरत होती है, जबकि 1 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक के लोगों के लिए 600 IU विटामिन डी की जरूरत होती है। जब इंसान की उम्र 70 साल से ज्यादा हो जाए तो उसे 800 IU विटामिन डी की जरूरत होती है। इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि विटामिन सप्लीमेंट का अंधाधुंध प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट कहते हैं इसका बहुत ज्यादा सेवन करने की वजह से आपके शरीर में वाटर रिटेंशन, सूजन और वजन बढ़ने की समस्या हो सकती है। इसकी वजह से आपके पाचन तंत्र को भी गंभीर नुकसान हो सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में जिम सप्लीमेंट का सेवन करने की वजह से आपके शरीर में न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो सकता है। और अब बात करते हैं एक खास विषय पर। अक्सर आपने भी झूठ बोला होगा, हमने भी झूठ बोला है, तो एक्सपर्ट कहते हैं कि झूठ और झूठे लोगों से बचें, ये भी एक बीमारी का कारण है। एक्सपर्ट कहते हैं कि झूठ एक ज्ञात असत्य है जिसे सत्य के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये एक असत्य बयान के रूप में दिया गया एक प्रकार का धोखा है जो विशेष रूप से किसी को ठगने और मूर्ख बनाने की मंशा से बोला जाता है, और प्राय जिसका उद्देश्य होता है कि किसी राज या प्रतिष्ठा को बरकरार रखना। झूठ बोलने का मतलब होता है जो व्यक्ति जानता है कि गलत है या जिसकी सत्यता पर व्यक्ति ईमानदारी से विश्वास नहीं करता, और ये इस इरादे से कहा जाता है कि व्यक्ति उसे सत्य मानेगा। एक झूठा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है, जो पहले झूठ बोल चुका है या जो आवश्यकता न होने पर भी आदतन झूठ बोलता रहता है। झूठ व्यक्ति पर भरोसा करना खुद को बर्बाद कर लेने जैसा है। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं बाल झड़ने की क्या वजह है। बेवजह अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, असमय आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये गंभीर समस्या है। इसी संबंध में आज हम बात करेंगे। तो बात सामने आती है कि विटामिन डी की कमी बाल झड़ते का एक उपयुक्त कारक हो सकता है। विटामिन डी शरीर को कैल्शियम और फॉस्फेट बनाने में मदद करता है, जो बालों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन डी की कमी बालों को कमजोर बना सकती है, जो उनके झड़ने की समस्या का कारण बन सकती है। बहुत ज्यादा बाल झड़ने का कारण कैंसर, हार्मोन में बदलाव, खराब स्वास्थ्य, आनुवांशिक कारण, ऑटो इम्यून की बीमारी जैसी वजह हो सकती है। इसके अलावा शरीर में पोषक तत्वों की कमी, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और आयरन, जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि से भी बाल झड़ने की समस्या होती है। बाल झड़ने को कैसे रोकें, ये एक विषय। तो इसी विषय पर डॉक्टर ए के अरुण कहते हैं, इसके लिए खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि का सेवन कर सकते हैं। विटामिन ए बालों को मॉइस्चर देने का काम करता है और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है। इसलिए विटामिन ए वाले फूड्स को डाइट में जरूर शामिल करें। विटामिन ए वाले फूड्स में गाजर, दूध, टमाटर, शकरकंद, तरबूज, लाल शिमला मिर्च, अंडा, मछली शामिल है। महिलाओं और पुरुषों में बाल झड़ने की एक वजह होती है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। ये बाल झड़ने का एक आनुवांशिक प्रकार है, जिसका इतिहास पारिवारिक होता है। पुरुषों में इस वजह से 20 साल से भी कम उम्र में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। महिलाओं में भी 40 की उम्र आने तक बाल झड़ने लगते हैं। इस स्थिति में मिनोक्सिडिल दवा दी जाती है, जिनमें सामने आया था कि फिनास्टेरिड लेने वाले कुछ लोगों के बाल दोबारा उग गए। लेकिन खास बात यह है कि फिनास्टेरिड बालों या स्कैल्प, जिसे हम कहते हैं, सिर की त्वचा पर असर नहीं करती। ये दवा DHT यानी ड्राई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करती है। इस हार्मोन के बढ़ने से पुरुषों में बालों की जड़ों को नुकसान होता है और बाल टूटने लगते हैं। DHT का स्तर नियंत्रित होने से बालों का टूटना कम हो जाता है और उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह इस दवा का उपयोग आप न करें। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने वाले हैं सांसों की डोर के विषय में, यानी कि अपनी श्वास के विषय में। अगर श्वास लेने में कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है, कौन कौन से कारण हैं, क्या समाधान है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, बात सबसे पहले श्वास संबंधित दिक्कतों के विषय में। एक्सपर्ट कहते हैं कि जब हम श्वसन रोगों के लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो खांसी, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द और हिमिप्टाइसिस अर्थात बलगम में खून आना प्रमुख लक्षण है। खांसी लंबे समय तक बलगम और कभी कभी बलगम में खून के साथ भी मौजूद हो सकती है। थूक में रक्त की उपस्थिति एक अशुभ संकेत है और रोगी की ठीक से जांच की जानी चाहिए। इन कारणों से भी हो सकती है ऐसी दिक्कतें। वो बात यूं सामने आती है, एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं का कम स्तर। जिन लोगों में एनीमिया की दिक्कत होती है उनमें भी अक्सर सांस की तकलीफ बनी रहती है। अस्थमा के रोगियों में सांस की समस्या होना सामान्य है। चिंता तनाव की स्थिति भी इस जोखिम को बढ़ा सकती है। हृदय या फेफड़ों की समस्या। बात करते हैं कैसे समझें कि श्वास संबंधी दिक्कतें हैं। घरघराहट, शोर भरी सांस लेना या घरघराहट एक संकेत है कि कुछ असामान्य चीज आपके फेफड़ों के वायु मार्ग को अवरुद्ध कर रही है या उन्हें बहुत संकीर्ण बना रही है। खांसी के साथ खून आना, यदि आपको खांसी के साथ खून आ रहा है तो ये आपके फेफड़ों या ऊपरी श्वसन पथ से आ सकता है। ये जहाँ से भी आ रहा है ये स्वास्थ्य समस्या का संकेत होता है। अब बात करते हैं ब्रोंकोस्कोपी क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि सांस की नली को देखने के लिए ब्रोंकोस्कोपी किया जाता है। इसमें नाक या मुंह के जरिए एक ब्रोंकोस्कोप डालते हैं जिसमें माइक्रो कैमरा लगा होता है। इससे ट्यूमर्स, इन्फेक्शन, सांस की नली या फेफड़ों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ये खास जानकारी डॉक्टर ए के अरुण हील इनिशिएटिव के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा था। ऐसी अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादन 90.8 एफएम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज बात हेल्थ की में हम बात करने जा रहे हैं जोड़ों में दर्द और अकड़न के विषय में, इसके उपाय के बारे में भी बातें करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे मीठा खाने के क्या नुकसान है, किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को तंदुरुस्त बनाकर रख सकते हैं, इसी संबंध में आज हम बातें आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। डॉक्टर ए के अरुण हील इनिशिएटिव से कहते हैं कि ऐसी स्थितियां जो जोड़ों में अकड़न पैदा कर सकती हैं, उनमें ऑस्टियो ऑर्थराइटिस, बर्साइटिस, रूमेटीड गठिया और बहुत कुछ शामिल है। गठिया, जिसे हम कहते हैं ऑर्थराइटिस, हड्डियों से जुड़ी बीमारी है। इसका मतलब होता है जोड़ों में सूजन, लेकिन इस शब्द का प्रयोग जोड़ों को प्रभावित करने वाली लगभग 200 स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर यह बीमारी 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वयस्कों में आम होती है, लेकिन बच्चों सहित सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है। मांसपेशियों में अकड़न का सबसे आम कारण मोच या खिंचाव है, जो मांसपेशियों और स्नायु बंधन दोनों को प्रभावित कर सकता है। तनाव तब होता है जब मांसपेशियों के तंतु खिंचते या फटते हैं। पैरों और पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव विशेष रूप से अक्सर होता है। मोच तब होती है जब स्नायु बंधन खिंच जाते हैं और मुड़ जाते हैं या फट जाते हैं। अब समस्या है तो समाधान भी है। उपाय क्या है, उपाय के बारे में बात करते हैं। सेंधा नमक मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या से निजात दिलाने में मदद कर सकता है। दरअसल इसमें मैग्नीशियम होता है जो मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है और ऐंठन में राहत देता है। होम्योपैथी की दवा मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम भी दर्द से तत्काल राहत के लिए उपयोग में लाई जाती है। दवा की पोटेंसी का चुनाव होम्योपैथिक चिकित्सक की मदद से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मीठा हर किसी को अच्छा लगता है और खाना खाने के बाद तो मीठा हर कोई खाना चाहता है, लेकिन मीठा अगर अति ज्यादा हो जाती है तो इसके कुछ नुकसान भी हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। अगर आप अधिक मात्रा में प्रोसेस्ड मिठाई का सेवन करते हैं तो इसमें ऑयल स्किन और मुहासे की समस्या हो सकती है। शुगर में कैलोरी और फैट अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो वजन बढ़ने का कारण बन सकता है। फैटी लिवर की समस्या भी हो सकती है। रात में डिनर के बाद मीठा खाने से बचना चाहिए। उनके अनुसार मीठा खाने से आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ जाता है। इसके साथ आप में इन्फ्लामेशन की समस्या भी होने की संभावना रहती है। मीठे में हाई कैलोरी होती है जो फैट में तब्दील हो सकती है, इसलिए वजन कम करने के दौरान मीठा न खाने की सलाह दी जाती है। मीठे को डाइट से कट कर देने की बजाय कम किया जा सकता है। गुड़ पौधे आधारित आयरन का एक उत्कृष्ट स्रोत भी है, इसलिए संतुलित मात्रा में ही गुड़ का सेवन करें। इससे एनीमिया के उपचार में मदद मिलती है। ये खास जानकारी डॉक्टर ए के अरुण के माध्यम से हील इनिशिएटिव के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे थे। ऐसी अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ। अल्ट्रासाउंड के बारे में तो आपने सुना ही है, क्या आपने सुना है कि दिल का भी अल्ट्रासाउंड होता है? जी हाँ, आज इसी संबंध में हम बात करने जा रहे हैं, बात हेल्थ में। इको और स्ट्रेस इको टेस्ट क्या है, तो इसके अंतर्गत डॉक्टर ए के अरुण बताते हैं कि इको टेस्ट मेडिकल इमेजिंग या दिल का अल्ट्रासाउंड है। ये डॉक्टर को हृदय की कार्य प्रणाली की निगरानी करने और हृदय रोग का निदान करने में मदद करता है। ट्रांस थोरासिक इको टेस्ट कार्डियोग्राम, इसके लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात सामने आती कि क्या ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम एक ही चीज है, तो एक्सपर्ट बताते हैं, हालांकि ईसीजी बनाम इकोकार्डियोग्राम हृदय की निगरानी करते हैं। ये विशिष्ट परीक्षण है। इलेक्ट्रोड का उपयोग करके ईसीजी हृदय के विद्युत आवेगों में असामान्यताओं का पता लगाता है, जबकि एक इकोकार्डियोग्राम हृदय की संरचना में विसंगतियों की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करता है। स्ट्रेस इको टेस्ट के परिणाम कोरोनरी धमनी की बीमारी का निदान कर सकते हैं और दिल के दौरे की शुरुआती जोखिम का आकलन करने में मदद करते हैं। यदि परिणाम सामान्य है तो हृदय ठीक से काम कर रहा है और कोरोनरी धमनी रोग के कारण रक्त वाहिकाएं शायद अवरुद्ध नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं हार्ट अटैक की स्थिति में क्या करें। ऐसी स्थिति में डॉक्टर ए के अरुण हील इनिशिएटिव से कहते हैं कि हार्ट अटैक का प्राथमिक लक्षण है सीने में दर्द होना। ये एक दबाव, भारीपन या जकड़न जैसा ही महसूस हो सकता है। ये दर्द पेट के ऊपर की तरफ जाता है, कभी बाएं हाथ या कंधे की तरफ जाता है, कई बार जबड़े में या दांत में भी दर्द हो सकता है। इसके साथ सांस लेने में तकलीफ और पसीना आना भी मुख्य लक्षण है। कुछ लोगों को पेट में गैस होने की फीलिंग भी आती है। बात सामने आती है हार्ट अटैक आने पर क्या करें, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि सबसे पहले मदद के लिए एम्बुलेंस को कॉल करें, या आपके पास अपना साधन है तो आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचें। नजदीक में जो भी व्यक्ति या मित्र है उसे भी तुरंत सूचित करें। जब तक गाड़ी तैयार होगी या एम्बुलेंस आएगा तब तक प्राथमिक तौर पर इस बीच एस्प्रिन की गोली मरीज को दें और चबाने को कहें। एस्प्रिन रक्त की धमनियों में क्लॉटिंग को रोकती है। अगर घर में सॉर्बिट्रेट की 5 mg की टैबलेट हो तो उसे जीभ के नीचे रखनी है। अगर मरीज होश में नहीं है तो कुछ भी पिलाने की कोशिश ना करें। मरीज अगर सांस नहीं ले रहा, पल्स नहीं मिल रही, वैसी परिस्थिति में तुरंत CPR शुरू कर दें। एम्बुलेंस आते ही या गाड़ी तैयार होते ही अस्पताल के लिए निकल जाएं। अगर नजदीकी अस्पताल का नंबर है तो उन्हें रास्ते से ही सूचित कर दें। आप ऐसे किसी मरीज को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं ताकि वो भी तैयार रहें। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 एफएम। सुनो शारदा
1: 90.8 एफएम। स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
2: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
3: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
2: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
1: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें? जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप अपनी जो खेती है वो आधुनिक तरीके से करें। परंपरागत तरीके से आप खेती करते हैं तो उसमें पैदावार कम होती है, लेकिन आज के जो आधुनिक तरीके हैं अगर उनका इस्तेमाल हम खेती में करते हैं तो हम अच्छी खासी आमदनी खेती से ले सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि केवल खेती पर ही आप निर्भर ना रहें, उसके साथ और भी काम करते रहें, जैसे कि मुर्गी पालन है, मछली पालन है, आपका जैविक खाद बनाने का प्लांट है, मधुमक्खी पालन है, और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप खेती के साथ साथ कर सकते हैं, साथ ही साथ औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। और इस तरह से जब आप खेती करते हैं तो जरूर आपको खेती से लाभ होता है। और पशुपालन तो हमारे हर किसान भाई को करना ही चाहिए, क्योंकि खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक होते हैं। हमारे जो पशु हैं उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है, चाहे हम दूध की बात करें, और उनका जो गोबर होता है वो तो इतनी अच्छी खाद उसकी बनती है कि उसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं तो बहुत अच्छी फसल हमें मिलती है। और साथ ही साथ जो हमारे घर में जब हम आटा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी भूसी बचती है, सब्जियां लेके आते हैं तो उसके अवशेष बचते हैं, जब कभी हमारे घरों में खाना ज्यादा बन जाता है, रोटियां ज्यादा बन जाती हैं तो उनको पशु खा लेते हैं। तो किसान मित्रों, ये जो तालमेल है खेती का और पशुपालन का, ये यूं ही चलते रहना चाहिए, तभी आप खेती से लाभ ले सकते हैं। और अब बात आती है किसान मित्रों कि जब आप खेती करते हैं तो बहुत सा समय आपके पास बचता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस समय का उपयोग कहाँ पे करें। वैसे आप अपने खाली समय का उपयोग मुर्गी पालन करके कर सकते हैं, साथ ही जो हमारे घरों की महिलाएं हैं और बच्चे हैं वो भी अपने खाली समय में इस धंधे को आराम से करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। घर में अगर मुर्गियां पाली जाएं तो उनके रखरखाव और खुराक पर अधिक खर्च नहीं करना पड़ता, क्योंकि घर का बचा कुचा भोजन, सब्जी के बेकार पत्ते और अनाज के बचावन से उनके लिए अच्छा भोजन प्राप्त हो सकता है, और उसके बदले आपको मुर्गियों से उत्पाद प्राप्त होता रहता है। किसान मित्रों, मुर्गियों की उचित देखभाल, संतुलित आहार, साफ सफाई और हवादार घर और अच्छी नस्ल का चुनाव करने से रोग की संभावना कम होती है। और किसान मित्रों, आपको याद ये रखना है कि शुरू से ही मुर्गियों में रोग निरोधक उपायों का अमल करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होता है, क्योंकि संक्रामक रोग हो जाने पर मुर्गियों को बचाना कठिन होता है। मुर्गी के बीमार पड़ते ही उसे स्वस्थ मुर्गियों के झुंड से अलग कर देना चाहिए और पशु चिकित्सक से सलाह लेकर ही चिकित्सा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति बीमार मुर्गियों की देखभाल करे उसे स्वस्थ मुर्गियों के पास जाने से पहले कपड़े बदल लेने चाहिए, और ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिन्हें वो आसानी से धो सके या फेंक सके। हाथों को कीटाणुनाशक दवाओं से धो लेना चाहिए। जिस घर में बीमार मुर्गी रह चुकी हो उसमें नई मुर्गियां रखने से पहले चूना से पुताई करवा देनी चाहिए, साथ ही समय समय पर DDT आदि का छिड़काव भी करते रहना चाहिए। इस तरह से किसान मित्रों, आप खेती के साथ साथ मुर्गी पालन करके अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही मुर्गी पालन की, और अब आप सोच रहे होंगे अपने मनोरंजन की, तो आइए सुनवाते हैं आपको एक उपदेश। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये उपदेश। किसान मित्रों, खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए खेत की मिट्टी की जांच बहुत जरूरी होती है। इसका मुख्य उद्देश्य खेत की जरूरत के अनुसार उसे पोषक तत्व उपलब्ध करवाना है, जिससे उत्पादन बढ़े और खेती में लागत कम आए। किसान मित्रों, देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न उत्पादन की मांग को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसके लिए मिट्टी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पौधे के विकास के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अधिक पैदावार और लाभ लेने के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग आवश्यक है, और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करने के लिए मिट्टी का परीक्षण करवाना बहुत आवश्यक है। तभी हमें पता चलता है कि मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है और किस पोषक तत्व की अधिकता है। इसीलिए किसान मित्रों, आप अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और उसी के अनुसार उर्वरकों का संतुलित तरीके से प्रयोग करें, क्योंकि मिट्टी की गुणवत्ता यदि अच्छी होती है तो हमारी फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिसके लिए जरूरी है कि समय समय पर मिट्टी की जांच की जाए। जैसे स्वस्थ शरीर के लिए अच्छा खान पान होना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार पौधों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। किसी भी फसल से उन्नत पैदावार के लिए ये जरूरी है कि उस फसल को किस प्रकार की भूमि में उगाया जा रहा है और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो कि मिट्टी जांच से पता चल जाता है, और उस भूमि में किस प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, जो कि मिट्टी की जांच से पता चल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके खेतों से भरपूर पैदावार हो और आपकी खेती में जो लागत है वो कम आए, तो आप अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं। अब बात आती है कि मिट्टी की जांच कहाँ पे करवाएं। तो आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र जा सकते हैं मिट्टी का सैंपल लेकर के, और वहां पर आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं और उसके बाद फिर फसल के हिसाब से खाद का प्रबंधन करके अच्छी आमदनी खेती से ले सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि मिट्टी की जांच का कितना बड़ा महत्व है खेतों से अच्छी पैदावार लेने के लिए। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और लोकेंद्र सिंह। किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रविंद्र खालोर और लोकेंद्र से ये रागनी, किस्सा था श्रवण कुमार का। किसान मित्रों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटा दिया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में बहुत कमी हो गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार के मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं फैलता और इसका कोई दुष्परिणाम भी देखने में नहीं आया है और ना ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी देखी जा सकती है। पिछले कुछ दशकों से हमारे बहुत से किसान बहन भाइयों द्वारा जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। किसान मित्रों, आपको बता दें कि फसलों में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को सुगमता से उपलब्ध होती है और हमारे खेत की मिट्टी में पहले से मौजूद अघुलनशील फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीवाणु प्राकृतिक हैं, इसलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर नहीं पड़ता। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही जैव उर्वरकों के उपयोग की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं महेश बपरौली और किस्सा रहेगा पृथ्वी सिंह किरणमयी का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे महेश बपरौली से ये रागनी, किस्सा था पृथ्वी सिंह किरणमयी का। और अब किसान मित्रों, समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं, अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है, उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है, बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरकंद से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरकंद का सेवन कर सकते हैं। शकरकंद एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा, और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है, जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
1: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
2: शिपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

दहेज प्रथा या हत्या। हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस प्रकार बन चुका है कि यहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आर्थिक हालातों पर ही निर्भर करती है। जिसके पास जितना धन होता है उसे समाज में उतना ही महत्व और सम्मान दिया जाता है। ऐसे परिदृश्य में लोगों का लालची होना और दहेज की आशा रखना एक स्वाभाविक परिणाम है। आए दिन हमें दहेज हत्याओं या फिर घरेलू हिंसा से जुड़े समाचारों से दो चार होना पड़ता है। ये मनुष्य के लालच और उसकी आर्थिक आकांक्षाओं से ही जुड़ी है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिसे जितना ज्यादा दहेज मिलता है उसे समाज में उतनी ही सम्माननीय नजरों से देखा जाता है। दहेज कम लाने पर शादी के पश्चात बहुओं को मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि उन्हें जला दिया जाता है, उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। नमस्कार, मैं हूँ गगन और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। साथियों, हिंसा को नो के अंतर्गत पहले भी हम कई सारे कार्यक्रम लेकर आ चुके हैं और अब प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी और आज का विषय है दहेज प्रथा या हत्या। इस विषय के अंतर्गत हम इस कार्यक्रम में ये भी शामिल करेंगे दहेज प्रथा के दुष्परिणाम। दहेज प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई, दहेज प्रथा के जिम्मेदार कौन है, दहेज निषेध अधिनियम से कितने लाभ हुए, दहेज एक्ट क्या है वगैरह वगैरह। तो आइए सबसे पहले हमारी सहयोगी किरण पांचाल से एक कहानी सुनते हैं। दहेज एक सामाजिक दिखावा, लीजिए प्रस्तुत है ये कहानी।

0: ये कहानी है मास्टर जी और मुंशी जी के अपने बच्चों की शादी में सामाजिक ढकोसले की। कहते हैं ना कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। मास्टर जी की बेटी का रिश्ता मुंशी जी के बेटे से हुआ। उसके बाद मास्टर जी को ढेरों तैयारियां करनी थी। 4 लाख तो मांगे के और बाकी के पैसे शादी के खर्च के। जोड़ा गया तो 8 से 10 लाख का खर्च तो यूं ही बैठ गया। मुंशी का लड़का दीपक MSc पास। नौकरी के लिए मुंशी बिल्कुल निश्चिंत थे। कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लग ही जाएगा, शादी कर देनी चाहिए। वहीं मास्टर जी की लड़की नीतू, वह भी MA, पहले दर्जे से पास। मास्टर जी भी उसकी शादी जल्दी कर देना चाहते थे। बिचौलिए से पोस्ट ग्रेजुएट लड़के का भाव पता किया तो पता चला कि वैसे तो रेट 5 से 6 लाख का चल रहा है, पर बेकार बैठे पोस्ट ग्रेजुएट का रेट 3 से 4 लाख में निपट जाता है। बिचौलिए ने सौदा 3.5 लाख में तय कर दिया। उधर मास्टर जी भी अपनी बेटी नीतू की शादी में जोर शोर से जुड़ गए। मास्टराइन कहती कि नाई को निमंत्रण भिजवाने का शगुन 25,000 भी ना दिया तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी। आखिर मिश्रा जी की पुत्री की शादी है, भोज में 25 से 30 प्रकार के भोजन ना हुए तो मेहमानों के सामने शर्मिंदगी ना होगी। सजावट दरवाजे से लेकर बिल्लू किराना दुकान तक आखिर होनी ही चाहिए। एक लौती पुत्री का विवाह है, देखने वाले भी तो कहेंगे कि वो देखो मास्टर जी की पुत्री की शादी है। और न जाने कितने सामाजिक ढकोसले से लेस थी मास्टराइन। लेकिन मास्टर जी और नीतू की सोच बिल्कुल अलग थी। वो दहेज के खिलाफ थे। बात तय हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ था कि सरकारी पत्र आया कि दीपक को डिप्टी कलेक्टर के पद पे चुन लिया गया है। बस फिर क्या था, मुंशी और मुंशियाइन की हीकड़ी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। मुंशी सरकारी तंत्र को कोसते हुए उन्हें ढेरों गालियां दे देते हैं। नीच, कमीने, निकम्मे, ये सरकारी अधिकारी किसी काम के नहीं। मुंशियाइन पहले तो सोचती है, फिर कहती है कि अरे भाई, लड़के की इतनी अच्छी नौकरी लगी है और आप नाराज क्यों होते हैं। वहीं मुंशी जी कहते हैं कि अरे सरकार एकदम निकम्मी है, मैं तो कहता हूँ कि इस देश में क्रांति होकर रहेगी। यही पत्र कुछ दिन पहले नहीं भेज सकते थे, डिप्टी कलेक्टर का 40 से 50 लाख तो यूं ही मिल जाता है। मुंशियाइन भी सुनकर सोच में पड़ जाती है और झिल्ला कर कहती है, तुम्हारी भी ना अकल मारी गई थी। मैं ना कहती थी कि महीने भर रुक जाओ, लेकिन नहीं, तुम तो तुम हो, ना मानो किसी की, हुलहुलाकर रिश्ता कर ही दिया। मैं तो कहती हूँ कि मास्टर जी को पत्र लिखिए, वे समझदार इंसान हैं। और फिर लड़का अब डिप्टी कलेक्टर लग गया है, थोड़ा सोचिए। मुंशियाइन की इस बात को सुनते ही लगे हाथ मुंशी जी ने पत्र लिख ही दिया। पत्र में कुछ यूं लिखा था, प्रिय मास्टर जी, यहाँ सब कुशल मंगल है। आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे। आपको प्रसन्नता होगी कि बेटे दीपक का चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हो गया है। विवाह के मंगल अवसर पर ये तो बहुत ही मंगल हुआ। इसमें आपकी पुत्री के भाग्य का भी पूरा योगदान है। अब आगे आप स्वयं समझदार हैं। समझदारी पर ही ये जमीन टिकी हुई है। इंसान का क्या है, जीता मरता रहता है। पैसा तो हाथ का मैल होता है, लेकिन मनुष्य की प्रतिष्ठा भी तो बड़ी चीज होती है। मैं तो कहता हूँ कि हमें अपने अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। सदियों से चली आ रही रीत को छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर हमें तो कुछ चाहिए नहीं, आप जितना भी देंगे अपनी लड़की को ही तो देंगे। आगे आप खुद समझ रहे हैं ना। आशा करता हूँ कि मेरे कम लिखने को ज्यादा समझेंगे। आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार है। मास्टर जी के परिवार ने पत्र पढ़ा, विचार किया और फिर जवाब तैयार किया। जवाब पत्र के रूप में मुंशी जी के घर पहुंच गया। मुंशी जी ने बड़ी उत्सुकता से पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रिय मुंशी जी, आपका पत्र मिला। मैं खुद आपको लिखने वाला था। दीपक की सफलता पर हम सब बेहद खुश हैं। आयुष्मान अब डिप्टी कलेक्टर हो गया है। दीपक एक चरित्रवान, मेहनती और सुयोग्य लड़का है, वो अवश्य तरक्की करेगा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि नीतू का चयन IAS के लिए हो गया है। आयुष्मती की इच्छा है कि अपने नीचे काम कर रहे कर्मचारी से वो विवाह नहीं कर सकती। आयुष्मती की ये भी इच्छा है कि शादी साधारण तरीके से हो। मुझे ये संबंध तोड़कर अपार हर्ष हो रहा है। आशा करता हूँ कि मेरे कम लिखने को ज्यादा समझेंगे। आपके उत्तर का बेसब्री से इंतजार बिल्कुल भी नहीं है। दोबारा लिखने का कष्ट न कीजिएगा। धन्यवाद।
1: कहानी के बाद एक बार फिर से स्वागत है। श्रोताओं, कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमारे समाज में ज्यादातर लोग दहेज प्रथा को बढ़ावा देते हैं। ये विडंबना है हमारे पढ़े लिखे समाज की। साथ में हमने ये भी जाना कि बेटी को पढ़ा लिखा कर उस काबिल बना दिया जाए कि वो अपना उचित और सम्मान पूर्वक निर्णय ले सके, तो शायद दहेज जैसी कुरीतियों से निपटा जा सकता। फिलहाल बारी है दहेज प्रथा की कुरीतियों से जुड़े मुद्दों पर विशेषज्ञ से बात करने की। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और विशेषज्ञ से बात करते हैं। एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी साकिब शेख।
2: नमस्कार, मैं हूं साकिब शेख और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM। श्रोताओं, आज हम फिर से लेकर हाजिर हैं आपके लिए वो खास कार्यक्रम जिसका हमेशा आपको होता है इंतजार। तो आइए, अब बारी है आपको एक्सपर्ट से मिलवाने की और एक्सपर्ट के जरिए से हम बातचीत इसी मुद्दे पे कर रहे हैं जिसे अभी थोड़ी देर में आपने एक कहानी सुनी और उस कहानी में आपने जाना ये जो दहेज है एक सामाजिक दिखावा है। जी हाँ, वर्तमान में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके कारण माता पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। सामान्यतः दहेज उस धन को या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर को दिया जाता है। दहेज वो धन संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। मैक्स रेडिन कहते हैं कि दहेज वो संपत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या अपने परिवार से प्राप्त करता है। आपने एक कहानी सुनी, उसमें तो एक लड़का होता है, उसकी शादी तय होती है, फिर उस लड़के की नौकरी लग जाती है, उसके बाद फिर वो उसका दहेज या फिर मांग का जो लेवल है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। हम आपको मिलवाते हैं जो आज हमारे साथ फोन के जरिए से मौजूद है, प्रेरणा जी हैं। अब वो आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगी दहेज के बारे में, दहेज के दुष्परिणाम के बारे में, दहेज निषेध अधिनियम से हमें कितना लाभ हुआ, दहेज एक्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगी और दहेज प्रथा के बुरे परिणाम के बारे में, और साथ ही बहुत सारी सामाजिक दिखावा है क्यों है कैसे है। तो फिलहाल इंतजार खत्म हुआ, मिलवाते हैं। स्वागत है आपका सुनो शारदा 90.8 FM पर।
3: शुक्रिया साकिब, आपने मुझे इनवाइट किया इस शो में और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे इस पे बात करने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आपने चुना है आज के समय में बात करने के लिए।
2: मैं भी चाहता था कि आपको हम चुने इस मुद्दे पे, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी लिसनर हैं आपसे कुछ सीखें और आपसे कुछ जानें और अपने अपने जानने वालों को भी इसके सीख दें। खैर, आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। शुरू करते हैं प्रश्न का सिलसिला जो हम आपसे जानना चाहते हैं और जो हमारे लिसनर चाहेंगे कि आप उनसे उन चीजों के बारे में बताएं। तो जब दहेज प्रथा की बात करते हैं तो दहेज प्रथा की शुरुआत की बात हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिभाषित कर ही दिया है कि दहेज है किसे कहते हैं, तो उसमें भी अगर कोई उतार चढ़ाव रहा हो तो उसे भी आप शामिल कर सकती हैं, लेकिन साथ में ये भी बताइए कि दहेज प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई और दहेज प्रथा के लिए जिम्मेदार कौन है।
3: जी, तो जैसे साकिब आपने शुरुआत में ही बहुत अच्छे से बताया, दहेज प्रथा जो है एक तरीके से कुरीति है समाज की, जो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक तरीके से लड़की पक्ष की तरफ से जितना भी सामान मटेरियल या चीजें दी जाती हैं एक बार पक्ष को एज अ गिफ्ट और एज अ मतलब दहेज के तौर पर जो दिया जाता है वो कहीं ना कहीं एक बर्डन भी एक लड़की पक्ष की तरफ होता है। और इसको अगर मैं ये बताना चाहूँ कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी या फिर इसका ओरिजिन कहाँ से रहा है, तो एक पर्टिकुलर मतलब डेट या ईयर हम नहीं शायद टटोल पाएंगे, क्योंकि पौराणिक हमारे ग्रंथों के अंदर भी दहेज प्रथा की बात हुई है। हिंदुस्तान के अलावा कई और देश भी हैं, यूरोप है, अफ्रीका है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे दहेज प्रथा भी अभी भी प्रचलित है।
2: सही बात है, बिल्कुल।
3: ब्राइड प्राइस के नाम से जानी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे प्रथाएं जो कहीं ना कहीं बहुत समय से चलती आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव भी थी, कुछ ने अभी के समय में और ज्यादा जितने प्रोग्रेसिव हम होते जा रहे उतना ही विकराल रूप ले लिया है, और दहेज प्रथा कहीं ना कहीं उसमें से एक है जिसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं, एक समाज है, परिवार के लोग हैं, जो इस तरह की मान्यता को या इस तरह की प्रथा को और ज्यादा प्रमोट करते हैं, या फिर एक तरीके से पितृसत्ता को भी मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि लड़की को या स्त्री को जो है एक निचला पक्ष दिया जाता है, उसकी जिम्मेदारी या तो पिता लेता है या पति लेता है। तो मुझे ये लगता है कि हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे हम कितने भी प्रोग्रेसिव हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, आधुनिक समाज में आधुनिक काल में भी हम आ चुके हैं, पर इस प्रथा से हम नहीं छुटकारा पा पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक मानसिकता भी है हमारी, जो इस कुरीति को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने या बढ़ावा देने के लिए भी है। और जैसा कि आपने बोला, एक तरीके का दिखावा जो है
2: जी,
3: वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि मैं कितना प्रतिष्ठित, कितना सम्मानित और कितना इज्जतदार समाज में माना जाऊंगा, वो मेरे बैंक बैलेंस और मैं कितना दहेज दे सकता हूँ या दे सकती हूँ उससे कहीं ना कहीं आंका जाता है।
2: सच तो ये है कि इसकी शुरुआत कहीं ऐसे हुई थी कि सपोर्ट के तौर पे कि एक आर्थिक मदद मिल जाए, लेकिन उसके बाद इन्होंने विकराल रूप लिया और फिर एक रीति में आ गया, कहीं रीति से इसको जोड़ते हैं, कहीं गिफ्ट से इसको जोड़ते हैं, और फिर आते आते एक बर्डन बन गया ये, है ना। अब दहेज निषेध के अधिनियम से कितना लाभ हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ भी कानून के कई सारे प्रावधान हैं और कानूनन भी इसको गलत कहा गया है, लेकिन इससे कुछ फर्क पड़ा, फायदा हुआ हमारे समाज को, या फिर अभी भी वहीं के वहीं हैं?
3: तो मैं ऐसा कहूंगी साकिब कि दहेज अधिनियम तो हमारा 1961 में आ गया था और इसको बार बार संशोधित भी किया गया 85 में, 86 में, और इतनी जरूरत पड़ती गई इसके संशोधन के लिए कि जो इसके क्राइटेरिया थे उसके अंदर घरेलू हिंसा जैसी जो चीजें हैं वो नहीं आ पाती थी। तो 2005 में नया एक्ट लेके आया गया जो घरेलू हिंसा से संबंधित था, घरेलू हिंसा के फिर केसेस हुए तो उसके अंदर दहेज प्रथा से रिलेटेड केसेस होने लगे। तो कानून अपनी जगह पे है, पेपर पे वो कानून है, बट कितना लाभ हो पा रहा है ये आंकड़ा बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम देखेंगे कानून की व्यवस्था होने के बावजूद भी, जो अगर मैं महिला आयोग का भी डेटा आपको बताऊं जो 2020 का है,
2: उसमें
3: कहा जा रहा है कि 20% से ज्यादा इजाफा हुआ है, मतलब लगभग जितने पिछले साल केसेस आए थे उसमें 19,000 केसेस कुछ सालाना रिपोर्ट हुए थे, उसमें अब 20% का इजाफा हुआ है।
2: अरे बाप रे।
3: या जो डोमेस्टिक हरासमेंट की जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं वो 5,000 तक की कंप्लेंट्स जो है एक साल के अंदर उस तरीके से आ रही है, जो जिसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो डाउरी रिलेटेड डेथ्स का है, डाउरी रिलेटेड हरासमेंट्स का है। और इसमें हर एक कैटेगरी के लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि जो निर्धन है या फिर जो एक पढ़े लिखे शिक्षित लोग नहीं है, शिक्षित समाज से एजुकेटेड लोग, मतलब इतनी हमारी एजुकेटेड महिलाएं हैं वो भी अपने केसेस जो है नहीं रजिस्टर कराती हैं, फैमिलीज वो चीजें नहीं रजिस्टर कराती हैं। और दूसरा पक्ष ये है कि उसको एक दहेज के तरीके से देखा भी नहीं जाता है कि वो गिफ्ट के तौर पे मान लिया जाता है या फिर
2: जो देंगे अपनी पुत्री को देंगे।
3: हाँ हाँ, वो कितना फोर्स्ड गिफ्ट है, कितना उसमें ब्रांडिंग है, कितने आपने कागज दिए हैं और कितना आपने मांगा है, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करते हैं। और ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लाभ की जो बात कर रहे हैं उसका परसेंटेज बहुत ही कम होगा, जहां बहुत एक्टिवली किसी लड़की ने, किसी परिवार पक्ष ने अपनी बात रखी होगी और उस केस को वो जीते होंगे तो वो परसेंटेज बहुत कम है। और इस लाभ का मैं मतलब अभी तक नहीं समझती हूँ कि हम 21st century में है और अभी भी हम दहेज प्रथा जैसे चीजों की बात कर रहे हैं। तो कानून से मतलब बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि वो प्रैक्टिकली कितना हमारी लाइफ में हम कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जो पेपर में लिखा हुआ है।
2: नहीं, सच तो ये है कि अगर हम इंडिविजुअली देखें तो हम खूब अपना ज्ञान देते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज वो है, जब अपनी बारी आती है तो मुझे लगता है कि सबके मुंह, जितने लोग हैं इंडिविजुअली, सबके मुंह खुल जाते हैं कि हाँ हमें चाहिए।
3: ये बहुत सही बात कही है साकिब आपने, क्योंकि आप देखिए कि मतलब हम आंकड़ा भी देखें, अगर मतलब डेटा को भी देखें या हम अलग अलग स्टेट्स की भी बात करें, हमारे यहाँ पे बहुत मतलब एक मतलब अगर आप एक IAS हैं तो आपकी मतलब बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, ऐसे जहाँ कम्युनिटीज हैं, या आप एक एजुकेटेड कम्युनिटी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी IAS अगर एक लड़का है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड है कि वहाँ 50 लाख का दहेज तो जाना ही जाना है, 1 करोड़ का दहेज जाना है। तो ये चीजें क्या है, ये हम एजुकेटेड क्लास की बात कर रहे हैं जो अफोर्ड कर सकती हैं इस तरह का गिफ्ट सिस्टम, इस तरह का दहेज देना या शो ऑफ करना। वहीं जहां एक परिवार है जो एक गांव से है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके लिए ये उतना ही बर्डन सम बन जाता है कि अगर वो अपनी बेटी का विवाह करना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं से उधार लेना पड़ता है, अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, अपने सालों की कमाई को इकट्ठा करके तब जाके वो उसको अपनी बेटी की शादी वो कर पाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखावा तो है ही, साथ में मुझे लगता है कि प्रोग्रेस करते करते भी हम एजुकेटेड क्लास भी अगर इसके ऊपर अपनी बात नहीं रख पाएगी, वो लड़कियां जो पढ़ी लिखी हैं, जो एजुकेटेड हैं, सब कुछ जानती हैं, उसके बावजूद इस गिफ्टिंग सिस्टम को दहेज के नाम पे प्रमोट करती हैं या अपनी बात नहीं रख पाती हैं, तो कहीं ना कहीं हम सभी उस का हिस्सा हैं और मतलब एक क्राइम है, एक इलीगल चीज है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं।
2: हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा और मैं भी यही कहूंगा। लेकिन एक बार अगर हम ये कहें कि जो कानून पे हम फिर से आना चाहेंगे, अगर दहेज एक्ट की बात करेंगे तो एग्जैक्टली वो है क्या?
3: तो मैं अगर दहेज एक्ट की बात करूं तो इसके अंदर बहुत क्लियरली बताया गया है कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी संपत्ति या मूल्यवान चीज जो एक लड़की की सुरक्षा के लिए दी जाती है, उसकी सहमति से दी जाती है, उसमें कुछ चीजें हैं, या तो वो वर पक्ष जो है वो डिमांड रखता है, वो इसके अंदर आती है, वो दहेज माना गया है
2: जी।
3: या कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक परिवार का मतलब सदस्य जो अपने मतलब किसी पक्ष अभिभावक जो है वो देना चाहते हैं, किसी और रिलेटिव के द्वारा कोई डिमांड आई गई है वो उसमें रखा गया है, कोई भी तोहफा जो है वो तो दिया गया है, या कोई ऐसी चीज है किसी मतलब कोई रकम है जो दी गई है वो इसके अंदर आती है। तो उन सभी चीजों को दंडनीय माना गया है, दहेज के रूप में माना गया है। और तीन स्थितियां बताई गई हैं कि विवाह से पहले, विवाह के अवसर पर और विवाह के बाद। इन तीनों स्थिति के अंदर जो भी गिफ्ट है या जो भी गिफ्ट के तौर पे दहेज मांगा जा रहा है, क्योंकि देखिए गिफ्ट जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत क्लियरली है कि मैं अपनी विलिंगनेस से दूंगी, मेरे को जो अच्छा लगेगा मैं वो दूंगी, और वो देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है।
2: बिल्कुल।
3: जबकि आप मुझे एक लिस्ट थमा दीजिए और बोल दीजिए कि 50 लोग हैं, इन 50 लोग के लिए इस ब्रांड का, इस चीज का इतने तोला सोना आप मुझे दीजिए, तो ये गिफ्ट नहीं है।
2: और फिर वही कहते हैं कि देंगे तो अपनी बेटी को ही देंगे।
3: हाँ, तो यहाँ पे बहुत क्लियर डिफाइंड किया गया है और लॉ के अंदर भी बताया गया कि वो जो भी गिफ्ट है वो केवल वधू के लिए है, वो उस लड़की के लिए है जो दिया जा रहा है, क्योंकि उसकी पेरेंट जो है उसका जो राइट है पेरेंटल प्रॉपर्टी में और एक सोशल फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है उसके लिए वो दिया जा रहा है। उसपे जो लड़की का ससुराल पक्ष है, पति और उसके जो लोग हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है उसपे। अगर वो उस पर अपना अधिकार मानते हैं, लड़की को प्रताड़ित करते हैं या उससे बोलते हैं कि और पैसा आप लेके आइए वो करिए, तो वो आपके जो कानून के दायरे में आता है उसके लिए सजा है, 6 महीने से लेके 7 साल तक की सजा है, 5,000 से लेके 10,000 रुपए तक का जुर्माना है उसके अंदर, पति के ऊपर भी और पति के परिवार के लोगों के ऊपर भी। तो नियम तो है हमारे यहाँ पे, और आप अगर उसको जानते हैं समझते हैं तो आप उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं।
2: बिल्कुल। अच्छा, हालांकि मैं इस प्रश्न को से पूछना ही चाह रहा था कि इसके लिए प्रावधान क्या है सजा के, तो आपने अच्छा किया बता दिया। लेकिन जब इस तरह से हो चुका है, आप एक एग्जांपल देते हुए कहा कि लड़का अगर आईएएस हो तो उसका एक बंधा हुआ रेट है कि उसका 50 लाख मिलेगा ही मिलेगा। इंडिविजुअली तो स्टेप लेने पड़ेंगे हर इंसान को,
3: बिल्कुल,
2: है ना?
3: बिल्कुल। और कई लड़कियां ले चुकी हैं, मतलब वो अपनी वो कहती हैं कि आप मुझे पेरेंटल प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा दीजिए, आप मुझे दहेज मत दीजिए। अगर क्योंकि पहले ये जब शुरुआत की हम बात कर रहे थे तो उसमें ये कह रही थी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी हमें लड़कियों को नहीं पता था कि उनका हिस्सेदारी कैसे होगी, तो उसको समझा गया कि हाँ आप डाउरी दहेज दे रहे हैं तो वही आपका हिस्सेदारी है।
2: जी।
3: तो जब ये समझ में आया और लॉ ने बहुत क्लियरली इसको डिफाइन किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत क्लियरली डिफाइन किया कि लड़की का भी उतना ही हिस्सा अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी में है, पिता के उसमें है, जितना कि एक लड़के का है, तो वहां से भी ये चीजें बहुत क्लियर हो गई कि अच्छा मुझे अगर मैं फाइनेंशियली नहीं सिक्योर हूँ तो एक हिस्सेदारी है जो मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकती है, तो दहेज का कोई सवाल फिर वहां से नहीं होता। तो ये बहुत समझना जरूरी है कि कानून आपके लिए है, व्यवस्था बनाई गई है, आप कितने उसमें सजग हैं, सचेत हैं, जानते हैं चीजों को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है,
2: बहुत इम्पोर्टेंट है।
3: इसलिए मुझे लगता है कि लड़कों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जब वो ये फैसला करते हैं शादी करने का तो बहुत क्लियरली इस चीज को समझें, और लड़कियों को भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो बहुत सही तरीके से इस चीज को सामने रख पाए।
2: बिल्कुल रखना चाहिए। अच्छा, अब समय जो है बहुत कम बचा हुआ है, तो हम दो तीन चीजें आपसे पूछते हैं और साथ में ये भी चाहेंगे कि आप आज का मैसेज भी दे दें। तो दहेज प्रथा के बारे में बुरे परिणाम तो है ही हमारे साथ, उनके बारे में थोड़ा सा कोई उदाहरण अगर देना चाहें तो दे दें, लेकिन जो हमारा एक दहेज को कहते हैं कि सामाजिक दिखावा है, ऐसे क्यों?
3: तो अगर मैं दहेज एक बुरी प्रथा है इसके आंकड़े देने चाहूं तो मेरे पास मतलब आंकड़ों की कमी नहीं है। इसमें मैं महिला आयोग का आपको डेटा दे सकती हूं, इसमें मैं आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा दे सकती हूँ। पैंडेमिक के अंदर हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हमारी जो महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न है कहीं ना कहीं दुगना हो।
2: अरे बाप रे।
3: कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स भी आई जो NCW ने भी बोला, व्हाट्सएप पे कंप्लेंट्स फाइल हुई, या मैं कहूँ कि जो FIR हुई, जो केस रिपोर्ट हुए, एक महीने के अंदर 1200 कुछ केसेस थे जो रिपोर्ट हुए हैं।
2: अच्छा।
3: तो पैंडेमिक के अंदर भी जब घर के अंदर स्थिति ऐसी खराब हो गई तब इतने ज्यादा केसेस जो हैं वो बढ़ने लगे हैं। तो डाउरी डेथ्स के हम रोज केसेस पढ़ते हैं, ये पिछले 3 साल का आंकड़ा है जिसमें बताया गया था कि हर घंटे 16 औरतें जो हैं उनकी डेथ होती है।
2: ये बड़ा आंकड़ा है,
3: ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और बहुत ही संवेदनशील आंकड़ा है जो कहता है कि मतलब हर घंटे अगर कोई महिला मर रही है केवल इस वजह से कि उसका परिवार दहेज नहीं दे पाया है, तो ये बहुत दयनीय आंकड़ा है। और ये स्थिति आपको बताते हैं कि हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, मैं किसी और सदी की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरा जो आपने बोला कि सामाजिक दिखावा है, तो जैसे मैं उस एग्जांपल से नोट करूंगी जो हम जो समाज में मेरी क्या स्थिति है, मेरी इज्जत, मेरी शोहरत, मेरी जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं पैसों के साथ आंकी जाती है, मेरे स्टेटस के साथ आंकी जाती है। हिंदुस्तान में बिग फैट इंडियन वेडिंग्स का हम बहुत बड़ा नॉमिनक्लेचर जो है वो देखते आ रहे हैं। तो एक दिखावा तो है ही, मैं जितना पैसा खर्च करूंगा, मैं जितना गाड़ी और जितना सामान दे पाऊंगा उतना ही मेरा शोहरत भी होगी और कहने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ इतनी बड़ी मैंने शादी की है। मेरी चाहे वो आपका इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपकी वो लड़की जो है खुश नहीं रहे, वो लड़की जो है प्रताड़ित हो, उत्पीड़न तब भी ज्यादा होता है जहाँ उन फैमिलीज के भी केसेस आए हैं जहाँ पे मोटा पैसा देने के बावजूद भी वो लड़कियां प्रताड़ित की जाती हैं, क्योंकि भूख है पैसे की तो वो खत्म तो होती नहीं है। तो ये एक चीज है जो एक सामाजिक दिखावे के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब हमें सोचने की जरूरत है कि हम एज अ ह्यूमन हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, एक मतलब शादी जैसे संबंध को हम कैसे देख रहे हैं, क्या हम उसको एक बिजनेस डील के तौर पे देख रहे हैं या फिर हम उसको एक सम्मान पूर्वक एक ऐसे कंपेनियनशिप की तरफ देख रहे हैं जहाँ पे दोनों लोग जो है एक पार्टनरशिप के अंदर है, ना कि एक बिजनेस डील के अंदर। अंत में मुझे लगता है कि हमें एज ह्यूमन एज वुमेन अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने राइट्स के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, कि हम कहाँ किससे सपोर्ट ले सकते हैं। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ किसको अप्रोच करें, किससे बात करें। अगर मैं एक दहेज उत्पीड़न की शिकार हूँ, मैं घरेलू हिंसा मेरे ऊपर इसलिए हो रही है क्योंकि दहेज नहीं दे पा रही हूँ, तो मुझे ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं या नेशनल लेवल पे बोलूं तो बहुत सारी हेल्पलाइन है, संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। अगर मैं बोलूं कि नेशनल वुमेन हेल्पलाइन जो है तो 1090 है, 1090 है, 1091, 1081 भी है जो गौतम बुद्ध नगर में और क्या कहते हैं हमारे गाजियाबाद के एरिया में है, जो स्पेशल वैन सर्विस है कि इमीडिएट मुझे हेल्प चाहिए, मैं निकली हूँ उस जगह से तो मैं कैसे रेस्क्यू अपना करवा पाऊँ, उसके लिए 181 हमारी हेल्पलाइन है जो काम करती है, एक्टिवली काम कर रही है। पैंडेमिक के अंदर बहुत लोगों ने इसको यूज किया है। और अगर मैं यूपी की बात करूँ कि यूपी वुमेन कमीशन जो है उसका भी एक हेल्पलाइन नंबर है, आई विल ट्राई टू टेल यू, और एक व्हाट्सएप नंबर भी है।
2: बिल्कुल।
3: तो जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1800 180 5220। आई विल रिपीट 1800 180 5220। और इसी पे एक व्हाट्सएप नंबर है, ये वुमेन कमीशन हेल्पलाइन है जो यूपी की है, और उसका व्हाट्सएप नंबर जो है वो है 6306511708, 6306511708। तो ये नंबर्स हैं जिनको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। सबसे इमीडिएट हेल्प आपका, आपको पता होना चाहिए कोई ट्रस्टेड आपका पर्सन है उसको आप बताइए अपनी स्थिति, इमीडिएटली पुलिस में रिपोर्ट कीजिए। एक्शन लेना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको समाज के हिसाब से छुपाते रहेंगे, बात कर मतलब छुपाना जितना आसान है उतना हम सहते रहेंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपना निर्णय जो है वो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए।
2: बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी और अपनी बात साझा की। आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी लिसनर है, तमाम श्रोतागण सुन रहे हैं, इसे लाभ उठाएंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।
3: थैंक यू साकिब।
2: तो श्रोताओं, ये थी प्रेरणा जी और ये आपसे बातचीत कर रही थी दहेज प्रथा के बारे में। काफी सारी जानकारी इन्होंने दी कि दहेज प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई और दहेज प्रथा के लिए जिम्मेदार कौन है और दहेज के अधिनियम क्या है, दहेज एक्ट के बारे में बताया और साथ ही साथ बताया कि दहेज प्रथा के बुरे परिणाम क्या है और ये सामाजिक दिखावा है। कई सारे मुद्दों पर इन्होंने बहुत अच्छे से रोशनी डाला। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को बहुत पसंद किया और अगर पसंद किया तो आप हमें फीडबैक भी देंगे, यानी अपनी राय प्रतिक्रिया देंगे या फिर इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी बात अपना रखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे वो दो माध्यम है, एक तो फोन का जरिया और दूसरा है ईमेल का जरिया। अगर फोन के जरिए से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 01204060205, यानी 01204060205। और अगर इंटरनेट के जरिए से संपर्क करना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस नोट कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है 90.8fm@sharda.ac.in। वंस अगेन वुड लाइक टू रिपीट इट फॉर यू, 90.8fm@sharda.ac.in। और अब इसके साथ अपने दोस्त अपने होस्ट साकिब शेख को दीजिए इजाजत। बने रहिए अपने सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8fm पर। अगले कार्यक्रम के लिए नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, मैं आपसे आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम का आपने लुत्फ उठाया होगा, इस कार्यक्रम से आपने एक सीख ली होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कार्यक्रम से आप ये सीख लेंगे कि दहेज एक कुरीति है, इसको बढ़ावा नहीं देना है। ये कार्यक्रम था दहेज प्रथा या हत्या। आप मुझे बताइएगा कॉल कर 01204060205 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं 90.8fm@sharda.ac.in पर। और ऐसे ही श्रृंखला हम आपके लिए समय दर समय लाते रहेंगे। बस आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें और सुनते रहें सुनो शारदा 90.8fm, ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8fm। और जल्दी मुलाकात होगी इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी के साथ।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8fm, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
5: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन। वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूँगा। कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं जरा सुने।
3: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
2: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी

0: और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें, तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरो साधन 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: क्या आपको पता है डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारी कैसे फैलती है? ये फैलती है मच्छरों के काटने से।
2: खुद को और अपने परिवार को डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए अपनाएं ये आसान उपाय।
1: हमेशा मच्छरदानी में ही सोएं।
2: दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं।
1: मच्छर अगरबत्ती जैसी मच्छर रोधी उपायों को जरूर अपनाएं।
2: पूरी बांह वाले कमीज, पैंट और मोजे पहनें।
1: और मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए
2: पानी की टंकी को पूरी तरह ढक कर रखें।
1: घर के भीतर तथा आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें।
2: फ्रिज के पीछे नीचे की तरफ लगी हुई ट्रे, टायर और खुले में रखे कोई भी बर्तन में जमा पानी को नाली में बहा दें।
1: कूलर और गमले वगैरह को हर सप्ताह खाली करके सुखाएं।
2: और गड्ढों को मिट्टी से भर दें जिससे उसमें पानी जमा ना हो।
1: याद रखना, बुखार में देरी
2: पड़ेगी भारी। संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल करें। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ।

बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल आईक्यू तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। ये है ग्रेटर नोएडा का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। दोस्तों, आज एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं हम आपके लिए। कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत है और ये कार्यक्रम अक्षर पर आधारित कार्यक्रम है। कार्यक्रम का शीर्षक है क का की कहानी। जी हाँ, इस कार्यक्रम के जरिए बच्चे अगर इस कार्यक्रम को सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो मुझे लगता है कि आसानी से चीजों को वो समझ पाएंगे। अगर ऐसा ही माहौल उनको घर में मिले तो ये भी सच है कि वो हंसते खेलते कब चीजों को याद करने लगेंगे शायद हमें और आपको पता ही ना चले। चलिए, मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराता, आइए इस कार्यक्रम को सुनते हैं।
2: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है अक्षर पर आधारित कार्यक्रम। आज का अक्षर है क, तो आइए सुनते हैं क क की कहानी।
3: तो दोस्तों, आज हम काका की कहानी सुनेंगे।
4: काका की काका कौन है, बता तो सही।
3: अरे अरे, काका नहीं, क क क क की कहानी। समझे?
4: क्या करे, समझ नहीं आ रहा,
5: ठीक से बताओ ना।
3: हाँ हाँ, तो सुनो। एक थी छोटी सी प्यारी सी लड़की, नाम था कमला। क से कमला।
4: क से कमला।
3: हाँ, क से कमला।
5: आप तो काका की कहानी सुनाने वाले थे, आप तो कमला की कहानी सुना रहे हो।
4: आप फुटू ना रहे हो।
3: अरे नहीं नहीं गुड़िया, सुनो तो सही। तो हुआ क्या, कमला के पास एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता था। क से कुत्ता। एकदम काला कुत्ता।
6: काला कुत्ता, वो काटता नहीं था।
5: मुझे तो कुत्ते से बहुत डर लगता है।
4: हमको भी डर लगता है।
3: अरे नहीं नहीं बच्चों, वो कुत्ता काटता नहीं था। समझ गए?
5: कुत्ता कमला तो को काटता नहीं था।
3: हाँ, वो कुत्ता काटता नहीं था। कमला कुत्ते को कालू कहती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, तो बताओ कमला कुत्ते को क्या कहती थी, क्या कहती थी?
5: कालू।
4: कालू। अच्छा, कमला और साथ साथ खेलते थे।
3: हाँ, कमला और कालू साथ साथ खेलते थे। पता कैसे खेलते थे? कमला कालू से कहती, कालू आजा आजा आजा आजा, और कुत्ता भौंकता। ऐसे। अब मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। नहीं पकड़ पाए ना, हार गए ना, हार गए ना। तो बच्चों, वो लोग ऐसे खेलते थे।
5: कितना मजा आता होगा ना दोनों को।
3: हाँ बिल्कुल, और कालू कमला के घर की देखभाल भी करता। अगर कोई जान पहचान का ना होता तो भौंक भौंक कर शोर मचा देता। कैसे शोर मचाता?
5: भौंक भौंक भौंक भौंक भौंक।
3: शाबाश। तो भाई, बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था कालू, बहुत ही प्यारा। और हाँ, एक चोर था, उसका नाम था कुंदन। क्या नाम था?
5: कुंदन।
4: कुंदन। कुंदन।
3: हाँ, कुंदन। वो कमला के घर चोरी करना चाहता था। रात को चुपके चुपके आता तो कालू भौंक भौंक कर शोर मचा देता और सब उठ जाते। और फिर क्या होता?
5: और चोर भाग जाता।
4: चोर भाग जाता।
3: हाँ, चोर भाग जाता, दुम दबाकर भाग जाता।
6: अरे पर काका की कहानी का क्या हुआ?
3: बताता हूँ भाई, तुम सुनो तो सही। कुंदन ने सोचा, क्यों ना कालू को ही चुरा ले। कालू नहीं होगा तो वो रात को चुपचाप चोरी कर लेगा।
5: कुंदन ने कालू को चुरा लिया।
4: कालू को चुरा दिया।
3: अरे रुको रुको भाई, पहले मुझे ये बताओ कि क से कमला के पास क्या था?
5: क से कुत्ता।
3: शाबाश। और क से कुत्ते का नाम क्या था?
6: कालू।
3: बिल्कुल सही कहा राहुल ने, क से कालू। अब तुम्हारी समझ में आया कि क से कुत्ता और क से कालू। और बताओ क से चोर का क्या नाम था?
4: क से चोर का नाम क्या था?
3: कुंदन। तो भाई कुंदन कालू को चुराना चाहता था, समझ गए? चोर ने सोचा, मैं कालू के मुंह पर कपड़ा बांध दूंगा, कालू भौंक नहीं पाएगा, फिर मैं उसे चुरा कर ले जाऊंगा। हाँ यही ठीक रहेगा। कहाँ है कालू, कहाँ है कालू? हाँ, वोरा। मैं कपड़ा इसके मुंह पर बांध देता हूँ। हाँ ए ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए तो बच्चों क्या हुआ जानते हो? क्या हुआ बताओ?
4: कुंदन ने कालू को चिल्ला दिया।
3: अरे नहीं, बल्कि कालू ने कुंदन को काट खाया। कैसे काटा बोलो, कैसे काटा? हाँ तो बच्चों ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ होगा, बताओ, सोचो।
5: चोर ने कालू को पकड़ लिया।
3: नहीं बिल्कुल गलत, बल्कि कुंदन ने खुद ही शोर मचा मचा कर लोगों को जगा दिया। तो दोस्तों हाँ, तो इस तरह से सब लोगों ने चोर को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। कैसे? पकड़ो कालू को चुराएगा। और फिर आखिर में चोर जेल चला गया। तो बच्चों कैसी लगी कहानी बताओ?
5: अच्छी
3: लगी। जिसको अच्छी लगी वो बजाएगा ताली, बजाओ। शाबाश।

0: क क की कहानी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कलाकार प्रवीण शर्मा और बच्चे, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगरो, निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल, आलेख निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।
1: अभी आपने सुना CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। अक्षर पर आधारित कार्यक्रम ये था कक्का की कहानी। तो बच्चा पार्टी, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर। और हाँ, इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का जो फेसबुक पेज है, जिसको हम सब चलाना जानते हैं ना, तो वहां पर भी आप हमें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अलावा कभी आपका मन करे कि शारदा विश्वविद्यालय आना है, रेडियो स्टेशन आना है, तो आप यहाँ आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, आप अपनी बात हम तक पहुंचाएगा जरूर। बस क्या करना है, सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। ये है ग्रेटर नोएडा का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
4: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ ये कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे, यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, दो महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी ला इलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी, कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान,
4: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय
1: मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
2: तुम कर क्या रही हो तारा?
0: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
2: ओह,

0: मच्छरों पे कैसे करना है वार, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार। हो जाओ तैयार, आज मच्छरों पे होगा जम के वार।
0: हेलो, मैं हूँ रिपोर्टर तारा और आज हम बात करेंगे एक खास मेहमान से।
2: हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ मच्छर और मैं और मेरी सेना फैलाते हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार। मुझको पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है।
0: वो तो देखा जाएगा मिस मच्छर, पर सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम हमें काटती क्यों हो?
2: क्योंकि हमें अंडे देने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और वो हमें मिलता है तुम्हारे खून से।
0: ये बात तो रिपोर्टर तारा को पता ही नहीं थी।
2: तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि हम एक बार में 100 से 400 अंडे तक देते हैं। हम अपनी पूरी सेना बना लेते हैं और तुम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को हमसे सबसे ज्यादा खतरा है।
0: ये बात है तो हम बच्ची भी मच्छरों से भिशुम भिशुम लड़ने के लिए तैयार है।
2: क्या कहा तुमने?
0: Kids want to know मिस मच्छर कि अब तुम्हारा क्या प्लान है?
2: अब तुम्हारे घर और बाहर या आसपास जहाँ भी ठहरा हुआ पानी होगा, मैं वहाँ अपना घर बना लूंगी और बहुत सारे अंडे दूंगी, बहुत सारे अंडे दूंगी।
0: आहा, मिस मच्छर को नहीं पता कि तारा ने पानी जमा होने वाली हर जगह को पहले से ही साफ कर दिया है।

0: जाओ टीम तारा, जहाँ भी जमाओ पानी, कर दो उसकी सफाई, फिर मच्छर और बीमारियों को बाय बाय।
1: टीम तारा है भैया।
2: अगली बार हम सीखेंगे मच्छरों से बचने के और उपाय।
0: फिलहाल रिपोर्टर तारा और अप्पा की ओर से
1: गुड बाय।

0: अब मैं जाऊंगी उनके पास जो नहीं है तारा की तरह तैयार।
1: टीम तारा, मच्छर आ रहे हैं, क्या तुम सब हो तैयार?

0: अगली बार हम सीखेंगे कि क्या करना है अगर आ जाए बुखार।
1: तब तक रहो तारा की तरह तैयार। बाय बाय।
2: हेलो मेरे बेस्ट फ्रेंड टिंकू।
3: हेलो मेरे प्यारे दोस्त तारा।
2: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
3: ओ मुझे बुखार हो गया है।
2: अप्पा, टिंकू को बुखार हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
3: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
2: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत है, हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
3: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूं तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: हाँ जल्दी आओ अप्पा। टिंकू तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी। तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा।

0: भूलना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्ते, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ में आपकी आरजे शिखा। और आज हम बातचीत कर रहे हैं अपने रेडियो शो के जिसका नाम है परवरिश और पोषण। आप समझ गए होंगे कि यहाँ बातचीत होगी पेरेंटिंग की, यहाँ बातचीत होगी आपके बच्चों से रिलेटेड हर टॉपिक पे। और सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगी, मेरे साथ में बातचीत करने के लिए हर बार चेयर के सामने होंगी एक एक्सपर्ट जो कि अपने एक्सपीरियंस, अपनी लर्निंग्स और अपने स्किल के बेस्ड पे आप सबसे एक तरह से एक एज अ काउंसलर अपनी जो राय है वो साझा करेंगे। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनामिका कर्ण मैम, जो कि PGT साइकोलॉजी एंड काउंसलर हैं JP इंटरनेशनल स्कूल की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार सभी को और थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: तो मैम, आप एक काउंसलर हैं JP इंटरनेशनल स्कूल में, आप इतने अच्छे से बच्चों को हैंडल करती हैं, मैंने काफ़ी आपके बारे में सुना भी है। तो आज जब बातचीत कर रहे हैं, मेरा जो आज का टॉपिक है वो बड़ा पेरेंट्स को लेकर के है, पेरेंट्स और जिम्मेदारी।

0: है ना, जैसे ही कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत भी है, इसकी शादी कर दो जिम्मेदार हो जाएगा, या बच्चा प्लान कर लेंगे अपने आप जिम्मेदारी आ जाएगी। तो एक तरह से हमारे यहाँ ये सोच है कि जैसे ही आप पेरेंट्स बनते हो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। तो जिम्मेदारी के नाम पे कई बार पेरेंट्स ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं, ओवर डू मोड में चले जाते हैं, ओवर कंट्रोल मोड में चले जाते हैं। तो मैं आज उस टॉपिक पे आपसे थोड़ा सा राय जानना चाहूंगी आपकी, कि कैसे पेरेंट्स को हैंडल करना है कि जब न्यूली वो पेरेंट्स बनते हैं।
1: जी देखिए, जैसे हम भी कभी बच्चे थे और हमने भी सारी चीजें पहले की हुई हैं, हर एक चीज में रोक टोक करना एक बच्चे को डिपेंडेंट बना देता है, वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, डिसीजन मेकिंग में उसके प्रॉब्लम आ जाती है कि वो कर नहीं पाता है कि हाँ भाई मैं ये करूं या अगला चीज़ मेरे लिए सही होगा, सही डिसाइड नहीं कर पाता है क्योंकि हर जगह उसको रोक टोक किया गया हो। तो घबराहट उसके अंदर होती है कि हाँ भाई ये नहीं करना है या करना है, ये करूँगा तो मुझे क्या रिएक्शन पेरेंट्स से मिलेगा।
0: यानी कि तो आपका कहने का मतलब है जैसे पेरेंट्स बनते हैं तो सबसे ज्यादा हमें लगता है कि अपने बच्चों को हम हमेशा सही गलत बताते चले।
1: जी हाँ, जैसा हम बिहेव करने लगते हैं कि भाई हम हैं डोमिनेंट, हम हैं कंट्रोल, हमारे हाथ में है, बस हम अपने हिसाब से इसको चलाते रहें। लेकिन बच्चा पालना या उसको बड़ा करना इज नॉट सिर्फ कि हाँ हम उसको कंट्रोल करें अपने हिसाब से। कई बार ऐसा होता है कि हाँ भाई करियर्स में भी सिलेक्शन बच्चा नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बचपन से हमने उसको डिसीजन नहीं लेने का फ्रीडम दिया नहीं, इंडिपेंडेंट है नहीं वो। अब सिंपल सी बात, हम एग्जाम्पल लें कि जो राह चलते वो लेबर्स होते हैं, चाहे इनके बच्चे कितने कॉन्फिडेंट होते हैं, पेरेंट्स काम करने गए में अपने छोटे भाई बहनों को पाल रहे होते हैं, उनको खाना खिलाना है, दिन भर संभालना है, सब चीज करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि रीजन उसके पीछे ये है कि हम बच्चों को कहीं बाहर जाना है तो 10 बार टोकेंगे, नहीं इतना समय हो गया अब नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, और रोड पे नहीं जाओ क्योंकि हो सकता है गाड़ियां ऐसी आती हैं। तो उनको अपना स्टेप उठाने देना चाहिए, कदम उठाने देना चाहिए डिसीजन लेने में, तब बच्चा सीख पाएगा कि हाँ भाई क्या सही है क्या। उसको उसका रिजल्ट देखने देना चाहिए कि हाँ भाई रिस्पॉन्सिबल होके वो एक पर्टिकुलर चीज अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करे और उसका रिजल्ट्स क्या आ रहा है, कंसिक्वेंसेस क्या हैं, वो फेस करे, तब वो सही गलत समझ पाएगा।
0: अच्छा एक चीज बताइए मैम, जैसे ठीक है बीइंग अ पेरेंट अगर हम रोक टोक कर रहे हैं, है ना, तो उसका बहुत ज्यादा रोक टोक, कुछ मामलों में तो ठीक है आप नहीं बताएंगे तो बच्चे को हो सकता है आप ना बोलें कि चलो खुद से सीखेगा, हो सकता है उसको चोट लग जाए, आपको पता है वो चीज, मे बी वो जहां से आगे बढ़ रहा है आगे गड्ढा है वो गिर सकता है, तो एज ए पेरेंट हम बताते हैं भाई उधर मत जाओ, हाथ नहीं पकड़ेंगे, रोकेंगे नहीं, लेकिन उसको बता दिया, वो एक पेरेंटिंग हो गई। एक होती है हर चीज पे, दीवार पे मत लिखो, पानी गिरा दिया, खाना सही से नहीं खा रहे, है ना, सुबह जल्दी नहीं उठ रहे, जो भी है, हर एज ग्रुप का मेरे ख्याल से पेरेंट्स का एक अपना चैलेंज आ जाता है कि बच्चा कभी डिसिप्लिन नहीं है, है ना, कई बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं नेक्स्ट लेवल के, जैसे मेहमान आए तो वो पेरेंट्स की सुनेंगे नहीं, या थर्ड पर्सन के आते हैं वो पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनते हैं, ऐसी अलग अलग सिचुएशन है। तो जब पेरेंट्स ज्यादा कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है?
1: रिजल्ट ये होता है कि हाँ भाई अब बच्चों को हमने टोकना हर जगह जो शुरू किया, बच्चों को कोई गेस्ट आया उसके सामने भी कभी टोक दिया, तो ये क्या होता है, बच्चा समझ जाता है कि मेरे तो इज्जत कोई है नहीं, कहीं पे भी मुझे बोल दिया जाएगा, टोक दिया जाएगा, तो वो डर वो शर्म उसकी निकल जाती है। तो अगर कहीं बच्चा गलती कर रहा है तो इसको पर्टिकुलर एक अलग तरीके से बताने का ये है, और या नहीं तो आप उसको अकेले में बिठा के या आराम से जब वो काम हो, जब सीखने के मोड में हो, तब उसको एक्सप्लेन करके देखें। या हम क्या होता है, बच्चा जो है लर्निंग करता है मॉडलिंग के थ्रू, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग लर्निंग होती है, जिसमें से एक मॉडलिंग है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जो बच्चा हम बोलते हैं ना बच्चे क्या है कॉपी कैट होते हैं, तो हर एक चीज वो कॉपी करते हैं, तो बच्चे ये भी चीज सीखते हैं कहीं ना कहीं से, जो फॉल्टी लर्निंग कहलाती है। तो अब इस फॉल्टी लर्निंग को होने से रोकना है या उसको हमें हो गई है तो उसे निकालना है, तो उसका एक तरीका होता है। कि उस तरीके से, अब जैसे कि हम लर्निंग में री इन्फोर्समेंट्स यूज करते हैं, तो री इन्फोर्समेंट मतलब अगर बच्चा गलत चीज कर रहा है तो हम नेगेटिव री इन्फोर्समेंट या पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट जब वो सही कर रहा है। तो अब स्कूल्स में बच्चों को कुछ अच्छा किया, कुछ क्रिएटिव किया तो उनको स्टार दिया जाता है, वो क्या पर्पस होता है?
0: एप्रिसिएशन।
1: तो एप्रिसिएशन मिला कुछ अच्छा किया तो, वैसे ही कुछ नेगेटिव किया तो उसका वो एप्रिसिएशन है, चाहे वो जो पसंद वाली चीज है उसकी हम उससे छीन लें। इन द सेंस फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है या एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं बैठ रहा है पढ़ने, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई उस पर्टिकुलर बच्चे को उसकी जो फेवरेट चीज है कि हाँ भाई उससे अलग कर दें, कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टाइम पे अगर तुमने नहीं किया जो काम दिया गया है तो उससे वो चीज ले लें, वो चीज उसको ना मिले।
0: अच्छा, कई बार पेरेंट्स का है कि दो थप्पड़ लगा दो सुधर जाएगा, जो ये जो हमारे यहाँ एक है ना कि बच्चों को पीटना पाटना इज लाइक ठीक है मारपीट, डू यू थिंक इट हेल्प?
1: मारपीट ही हर चीज का सॉल्यूशन
0: है ना, जो कि बच्चे को दूसरी तरह से
1: मैंने वही बोला, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, हम पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं, हम पिटाई नहीं कर रहे हैं। पिटाई करना, अब बच्चा सोचता है कि हाँ भाई एक बार दो बार उसकी पिटाई हो गई तो नेक्स्ट टाइम से उसके दिमाग में ये होता है कि हाँ भाई गलती करूंगा, दो थप्पड़ मारेंगे ही और उसके बाद तो ठीक है उतना मैं खा लूंगा। लेकिन जो चीज उसे पसंद है वो अगर आप उससे छीन ले रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तो वो नेक्स्ट टाइम उसे वो चाहेगा, वो चाहिए तो वो काम करेगा,
0: वो अपने आप सेल्फ ड्रिवन रहेगा
1: उस चीज को पाने के लिए, वो चीज वो करेगा। तो मतलब सिखाने का कोई सिखाने का तरीका होता है, हर बार हम हाथ उठाएं और हर बार हम लाठी उठाएं ये जरूरी नहीं,
0: जरूरी नहीं। अच्छा मैम, जैसे स्कूल में एज अ काउंसलर कई बार आपके सामने बहुत से ऐसे केसेस आते होंगे बच्चों को जब आप काउंसल करती हैं, तो क्या ऐसे कॉमन तरह के चैलेंजेस आते हैं जो आपको लगता है कि वहाँ आप एक रोल प्ले करते हैं, थोड़ा सा आप शेयर करना पसंद करेंगे?
1: कॉमन मोस्टली यही है, अभी प्रेजेंटली ये आ रहा है कि हाँ भाई बच्चे लिखना नहीं चाहते, जो कोविड का टाइम खत्म हुआ है उसके बाद मैंने अपने
0: अपने
1: घर में भी ये चीज देखा है जब मेरा बेटा है, तो एक्चुअली क्या है वो लिखने से हट गए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हुई और ये, लेकिन अब वापस से उस लेवल पे लाने के लिए अब टीचर्स को लगता है कि हाँ भाई ये लिख नहीं रहा है, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये एक्चुअली उनकी प्रैक्टिस राइटिंग की वो ख़त्म हो गई हुई है। और बिना किसी क्लिनिकल डायग्नोसिस के, बिना किसी इसके किसी को लेबल कर देना, ये सबसे बड़ा गलत है।
0: सो अच्छा मैम, आज के टाइम में मुझे लगता है पेरेंट्स भी और बच्चे भी थोड़ा टेम्पर को बहुत जल्दी लूज आउट कर जाते हैं, पेशेंस की कमी आ गई है,
1: रेजिलियंस भी नहीं है, एग्रेशन है।
0: तो एज अ काउंसलर आप पेरेंट्स को क्या कहेंगे, क्योंकि ठीक है पेरेंट्स भी कई बार गिव अप कर देते हैं, गुस्सा आ जाता है, नहीं समझ में आता, बच्चे को एक ही चीज 10 बार समझा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, तो हाउ डू यू लाइक व्हाट वुड यू सजेस्ट एज अ पेरेंट, आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें?
1: एक पर्टिकुलर सिचुएशन जैसे आपने बताई कि हाँ भाई गुस्सा आ जाता है, एग्रेशन हो जाता है, तो एग्रेशन कंट्रोल करना हमें बहुत ज़रूरी है, वो अपने लिए भी और आज के जो टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनमें ये हो गया है कि हाँ भाई किसी ने कुछ बोल दिया वो सहन नहीं होता है और तुरंत लड़ जाते हैं, तो ये है कि लड़ाई हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, या गुस्सा करके डांट करके, वही मैंने अभी कहा जैसे कि हम मार के पिटाई करके ही हर चीज नहीं सिखा सकते,
0: नहीं सिखा सकते,
1: तो वैसे उसके लिए भी अलग तरीका है। एग्रेसिव हो के हम अपना वो टेम्पर अगर दिखाएं बच्चे को तो माइट भी वो गलत इफेक्ट दे उसको। और ये टीनेजर्स में या आजकल जो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो मैंने देखा है मेरे क्लास 11 12th के बच्चों में, तो ये है मोस्टली उनका सोशल मीडिया पे रेगुलर रहना, ज्यादा से ज्यादा टाइम बताना, और प्लस जो फ्रेंड सर्कल भी इनका है, तो फ्रेंड सर्कल में इनका ये नहीं है कि एम हाँ एजुकेशन होना चाहिए या एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, हमारा अपना स्टेटस जो है एजुकेशन से या पढ़े लिखे इससे रिलेट कर, वो सिर्फ मानते हैं कि हाँ भाई पैसा पैसा है, पैसा ही इम्पोर्टेंट है। तो जहाँ पैसा ही इम्पोर्टेंट है, वही मैं आज अपने बच्चों को बता रही थी कि जहाँ पैसा ही इम्पोर्टेंट है, अभी वो कोई किसी क्रिमिनल की डेथ हुई थी तो उसके बारे में, तो वो क्या पैसा कोई कमा लेता है लेकिन वो इस्तेमाल कब कर सकता है, कैसे कर सकता है? जो सही तरीके से कमाया गया पैसा है वही इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत तरीकों से जो है वो इस्तेमाल करने से भी डर लगेगा कि हाँ भाई सही से हम दिखा सकते नहीं।
0: राइट।
1: तो ये सारी चीजें इफेक्ट कर रही हैं यंगस्टर्स को आज के इसमें।
0: अच्छा, ये सोशल मीडिया वाली जैसे आपने बात की, क्योंकि हम सब देखिए बड़े हैं, बच्चे बूढ़े, आई थिंक हर एज ग्रुप सोशल मीडिया पे टाइम दे रहा है, है ना? और सबसे खास बात तो ये कि आपको पता ही नहीं चलता कितना समय बीत गया।
1: जी हाँ,
0: आप देखते रहते हैं, एक रील दो रील चलता रहता है, सिलसिला चल रहा है। आपने एक बार कुछ मूवी देखनी शुरू की तो आपको लगता है बस खत्म, जब तक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक नहीं मजा आएगा। सीरीज का जो एक नया दौर चला है वो, हाँ बिल्कुल, अगर 20 सीरीज है और आपने शुरू कर दिया, 20 एपिसोड्स है एक सीरीज में से, तो आप रात भर देखेंगे, जुनून काइंड ऑफ, मतलब हम भी नहीं हट पाते। सच्चाई है कि वीकेंड्स पे हम में से कितने लोग सीरीज ही हमारा है,
1: बस वही सीरीज है। आज के समय में ये सीरीज और ये जो गेमिंग का एडिक्शन है,
0: यस,
1: ये बहुत ज्यादा
0: तो, लेकिन पेरेंट्स अब क्योंकि देखिए मैम अभी क्या है, इसमें हम सब इन्वॉल्व है। मैं खुद सोशल मीडिया देख रही हूँ, बच्चे को कैसे मना करूँ, क्योंकि बच्चा भी बोल देता है आप भी तो देखते हो। तो पेरेंट्स कैसे, एक तो कंट्रोलिंग कैसे सोशल मीडिया की जाए, फिल्ट्रेशन कैसे किया जाए, तो एज ग्रुप वाइज।
1: फिल्ट्रेशन के लिए तो गूगल वगैरह ये सब पे है, आपको सर्विसेज हैं उसमें कि हाँ आप ब्लॉक कर सकते हैं, बट कहीं ब्लॉक कर देने से सिर्फ ये नहीं है जब तक हम अपने आप को ब्लॉक ना करें। मेन है खुद को हमें रोकना है कि हाँ भाई हम जो पर्टिकुलर टाइम 1 से 2 घंटा 3 घंटा इस चीज पे यूज कर रहे हैं, कहीं और भी क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं, या अपने आप में, या अपने रिलेशंस को, अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने में कर सकते हैं।
0: तो व्हाट यू सजेस्ट कि सबसे पहले हम खुद
1: को, अपने आप को सीधा स्टॉप कहें इस पर्टिकुलर चीज, ठीक है? किसी चीज का एक लिमिट होता है, एंटरटेनमेंट के लिए भी एक लिमिट होना चाहिए। जैसे इवन आई हैव, मुझे भी आदत है मोबाइल पे ये करने की, लेकिन मोबाइल पे मैं बुक्स रीड करती हूँ, उसके सिवा मेरा व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह चाहे ये जो लोग करते हैं वो नहीं। क्यों? क्योंकि पता है कि एक बार अगर डालना शुरू किया या एक बार किसी का हमने देखना शुरू किया तो वो बस लगातार चलता ही जाएगा। नेक्स्ट डे लगता है कि हाँ आज उसने क्या स्टेटस डाला होगा।
0: True.
1: मैंने कई लोगों को देखा है आपस में अच्छे रिलेशंस में लड़ जाते हुए, किस लिए? बस कि हाँ भाई उसके स्टेटस पे ये चीज थी, उसने मेरे बारे में लिखा होगा, ये मेरे बारे में ही होगा। तो ये क्या है, हम एक्चुअली क्या है, हम वही सोचते हैं जो हम चाहते हैं। हमारा जो परसेप्शन है किसी चीज के बारे में कैसे बिल्ड होता है, वो हमारे खुद से।
0: True, absolutely true.
1: फॉर एग्जाम्पल, अगर 11, 12 के बच्चे दो बात कर रहे हैं, दोनों अलग अपोजिट जेंडर्स की, तो किसी और का नजरिया क्या होगा कि हाँ भाई इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। तो ये क्यों कुछ चल रहा ही हो सकता है, क्यों वो फ्रेंड्स नहीं हो सकते? तो ये है कि हाँ हमारे परसेप्शन में, हमारे पास्ट में, हमारे स्टीरियोटाइप्स में एक चीज बैठ गई है कि हाँ भाई दो लड़के लड़कियां बात कर रहे हैं मतलब उनका कुछ गलत रिलेशन ही होगा।
0: जजिंग,
1: तो जजिंग है, ये हमारा परसेप्शन है, इसको चेंज करने की बहुत जरूरत है।
0: तो बहुत अच्छे से अनामिका मैम आपने एक्सप्लेन किया है ये टॉपिक्स को, बहुत अच्छे से आपने एग्जांपल देके हमें समझाया है, एंड आई एम श्योर कि हमारे लिसनर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही है ये बातचीत से, स्पेशल रेडियो शो से यहाँ पे। लेकिन विद योर परमिशन एक छोटा सा ब्रेक चाहूँगी मैं, और ब्रेक के बाद फिर वापस अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
1: जी श्योर।
0: सो लिसनर्स, एक छोटा सा ब्रेक लेकर के वापस मिलते हैं, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूँ आपकी आरजे शिखा और हमारा रेडियो शो परवरिश और पोषण, जी हाँ वो लेकर के मैं वापस आ गई हूँ। हमारे साथ में इस समय काउंसलर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं अनामिका कर्ण मैम, जो कि जेपी इंटरनेशनल स्कूल से यहाँ आई हैं और आज बहुत अच्छे से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हमारे पेरेंट्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके लिए वो खास बातचीत लेकर के आ रही हैं। तो मैम, आपने काफ़ी चीज़ें हमें समझाई, सोशल मीडिया पे बातचीत हो गई, पेरेंट्स के बिहेवियर एंड सेल्फ कंट्रोल पे बात हुई। अब एक चीज़ अगर हम आते हैं, सी एनीथिंग, किसी भी चीज़ पे जैसे हमने किसी को रोकना शुरू किया, खास तौर पे बच्चों पे, तो बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, छुपाना शुरू करता है। एक सिचुएशन है जहाँ बचपन में ही बच्चे ने प्यारे प्यारे झूठ बोले और एज अ पेरेंट हम बड़ा एंजॉय करते हैं, अरे देखो झूठ बोल रहा है, ठीक है, मजा आता है। लेकिन अगर वही कैपिंग नहीं की गई या वही उस चीज को टैकल नहीं किया गया, एक तो वो सिचुएशन पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगी कि बचपन में ही जब पता हो कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो उस पे कैसे रिएक्ट करें, क्या करें, और जब बच्चा टीन एज वाले एज में चला जाए, नहीं हम कंट्रोल कर पाए, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो पहले झूठ नहीं बोलते, टीनेज में जाके बहुत सी चीजों के लिए, फ्रेंड सर्कल, बहुत सी ऐसी चीजें होती है आसपास जो इफेक्ट करती हैं और वो झूठ बोलने लग जाते हैं, तब पेरेंट्स क्या करें? तो ये दो चीजों पे
2: देखिए, जैसे आपने बोला कि बच्चा झूठ बोल रहा है बचपन में ही और हम पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उसको आगे मजाक बना के चाहे ये करके, तो बच्चा ये फील करता है कि हाँ भाई ये तो एक्सेप्टेड है, मैं बोल रहा हूँ, लोग एंजॉय कर रहे हैं, यही है बेस वो फॉल्टी लर्निंग जो अभी मैं बोल रही थी उसका, कि हाँ भाई ये गलत लर्निंग कहाँ से हुई, बचपन में, ठीक है मैंने झूठ बोला तो पापा मम्मी को अच्छा लगा, वो हंस रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ से शुरू हो गया ये चीज़। ये लर्निंग आगे जाके टीनेज में कंटिन्यू होगी, यही चीज़। दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि टीनेजर्स बचपन से कुछ नहीं झूठ बोला उन्होंने, लेकिन टीनेज में आके कुछ चीजें छुपाने लगे, छुपाने कब लगता है बच्चा, जब उसे डर लगता है कि इसका मुझ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पापा मम्मी को पता चला तो क्या होगा,
1: मतलब कभी उसने कुछ अगर बताया है आपको पता चला तो आपने ओवर रिएक्ट कर दिया, जिससे बच्चा डर गया, सोल्यूशन बनाता है कि बताएंगे या छुपा लेंगे,
2: जी हाँ, तो वो क्या है उसके बाद से वो छुपाना शुरू कर देगा कि हाँ अब मैं बता दूं तो क्या होगा। तो हमें एक्चुअली क्या है, टीनेज में वो क्यों अपने दोस्तों से बात कर रहा है या दोस्तों से शेयर कर रहा है, बिकॉज उसको लग रहा है कि वहाँ पे वो बात कर रहा है और वो एक्सेप्टेड है, तो क्यों ना हम बीइंग अ पेरेंट उसकी चीज़ों को एक्सेप्ट करें और जहाँ गलत है उसे वो चीज़ बताएं कि हाँ बेटा ये गलत है और ये क्यों गलत है, ठीक है मैं तुम्हें रोक रही हूँ कि हाँ भाई शाम में या अंधेरा होने के बाद तुम बाहर मत जाओ, तो क्या कंडीशन है, क्यों मैं रोक रही हूँ, वो उसको क्लियर पता होना चाहिए। तो क्या है, बच्चा छुपाना, जब क्लियरली उसको पता है, लिमिट्स पता है कि मैं बता दूंगा उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है तो वो झूठ बोलेगा ही नहीं,
1: राइट तो यानी देयर शुड बी अ ट्रांसपेरेंसी और एज अ पेरेंट हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है।
2: बीइंग अ टीचर, मुझे जितना मैंने अब तक एक्सपीरियंस किया है इसके अकॉर्डिंग बच्चे मेरे पास आते हैं, बीइंग अ टीचर या एज अ काउंसलर आते हैं, मैम हम आपसे जो बातें शेयर कर पाते हैं हम घर में पापा मम्मी से नहीं कर पाते,
1: एंड इसका रीजन आप फिर कैसे,
2: बस यही है, क्यों, क्योंकि हाँ पापा मम्मी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे ऐसा है, आप समझ जाते हो हमारी बातें, तो आप समझ जाते हो, क्यों, क्योंकि उनको यहाँ लग रहा है कि अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिल रहा है,
1: हाँ,
2: जी हाँ, हाँ, हाँ, तो कोई कंडीशन नहीं है यहाँ, एक्सेप्ट किया जा रहा है कि मैं क्या हूँ और मैं कैसा हूँ, ठीक है आगे क्या सही है गलत है, जब उसको एक्सेप्टेंस मिल गया तो उसके बाद अगर आप उसको सही गलत क्या है उसमें वेरिएशन समझाने की कोशिश करेंगे तो वो ऑब्वियसली समझेगा,
1: जी, तो वो सही बात है, बिना डर के बच्चा, ठीक है गलती हो गई तो वो बताएगा भी, और आप अगर उसको विद रीजन समझाएंगे,
2: जी हाँ,
1: तो वो समझेगा, जी हाँ।
2: अब फॉर एग्जांपल मेरे घर में ही मेरा बच्चा आके वो हर एक चीज मुझसे शेयर कर सकता है, पापा से नहीं, तो कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी जिसके कारण वो आके हर एक चीज शेयर कर रहा है, चाहे वो कैसी भी बात हो, तो ये क्या है, वो एक्सेप्टेंस उसे मिल रहा है, तो वो चीज होना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में, किसी भी
1: right.
2: चाहे वो पेरेंटल रिलेशनशिप में हो चाहे वो स्पाउस में हो हर किसी में ये होना जरूरी है.
1: अच्छा मैम एक और चीज, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी लेबलिंग की
2: जी.
1: और अभी आपने एक्सेप्टेंस की बात की
2: जी.
1: हमारे यहाँ आसपास अभी भी अगर हम देखें तो जब भी हेल्थ की बात होती है, क्योंकि शो इज ऑल अबाउट परवरिश और पोषण, तो अगर हम पोषण न्यूट्रिशन या हेल्थ की फिटनेस की बात करते हैं तो फिजिकल फिटनेस बच्चों के लिए बहुत जरूरी है. माँ बाप हमेशा अच्छा खाओ खाओ खाओ, मतलब हमारा एज अ पेरेंट दिन भर होता है कि बच्चा हम बस हमको बहुत श्योरिटी हो जाती है अगर उसने दिन भर खाना अच्छा खाया
2: अच्छे से,
1: हमें लगता है ठीक है.
2: लेकिन
1: आज का दिन
2: वहीं पे हम देखते नहीं है कि वो फिजिकल फिटनेस के लिए उसको एक्सरसाइज करना खेलना
1: वो एक साइकिल, कि क्या उसने अगर आज हमारे हिसाब से अच्छे से खाना खाया है तो क्या उसने उसको कैलोरीज बर्न की है. मेरे ख्याल से ये जो एक पूरा फिजिकल साइकिल एक्टिवेट करने का सर्कल है इसमें अभी भी हम थोड़ा सा लैकअप कर रहे हैं. दूसरा लेबलिंग की बात हो, बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं और बच्चों की बात आते ही पेरेंट्स बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. ठीक है, बहुत से बच्चों में कई बार छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, मतलब मान लीजिए ऑटिज्म की चैलेंज है या डाउन सिंड्रोम है या कुछ ऐसा जो कि बच्चा चैलेंज्ड है. पेरेंट्स डिनाइल मोड में चले जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि, और दूसरे जो है दूसरे लोग हैं बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं. तो ये चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए कोई भी एक पर्टिकुलर बच्चा है विद स्पेशल नीड, सोसाइटी में वो एक्सेप्टेड आज के समय में भी पूरी तरह से नहीं है. अगर हम देखें तो अगर एक बिल्डिंग में कोई बच्चा है जो स्पेशल नीड्स जैसे चाहिए, वो नीचे उतरता है खेलने के लिए, बाकी बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो क्या होता है वो बच्चा कट कट के ही चाहे वो रहता है. सो वहाँ से हाँ वो कौन सा बच्चा, अच्छा वैसा था ना वो वाला बच्चा, क्या हुआ वहाँ से शुरू हुआ. पेरेंट्स में एक्सेप्टेंस नहीं, सिंपल सी बात है, कोई सीरियस बीमारी भी किसी को होती है तो वो जल्दी पहले एक्सेप्टेंस मोड में नहीं होता, डिनायल में ही होता है. तो पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करके और डिले कर देते हैं कि हाँ भाई जब पता चलता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो इंटरवेंशंस उस हिसाब से शुरू हो जाए. थेरेपीज जो है वो 3 ईयर्स के पहले अगर शुरू हो जाती हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं. लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ लकड़ी पुरानी बांस पुराना हो गया तो उसको आप मोड़ नहीं सकते हैं, बस वैसा ही होता है कि हाँ भाई ये अगर पर्टिकुलर डिसेबिलिटी है या कुछ प्रॉब्लम है उसमें डिले हो गया आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्टेंस इसी स्टेज में,
1: तो आगे जाके स्लो हो जाती है फिर ट्रीटमेंट
2: स्लो, और फिर कई बार पॉसिबल भी नहीं होता है इस चीज,
1: क्योंकि वो अर्ली एज में ही वो चीजें डायग्नोस हो जाए और ट्रीट हो जाए तो बेटर है
2: जी.
1: तो मैम एज अ लाइक एज अ पेरेंट और एज अ सिटीजन आप लोगों को जो हमें सुन रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे जब इस तरह से, जैसे आपने बात किया पार्क में खेलने गए और भी सोसाइटी के बच्चे आए हैं, तो देखिए बच्चे तो नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं उसके साथ नहीं खेलना है, लेकिन अगर वहीं पे और भी पेरेंट्स खड़े हैं वो कैसे अपने बच्चों को समझाएं कि आपको खेलना है उसके साथ,
2: ये कैसे सेंसिटिविटी बनाने की जरूरत है हमें सोसाइटी में कि हाँ भाई वो भी तो एक बच्चा ही है, जो प्रॉब्लम है वो उसके लिए है, वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट हमें जो करना है वो हम, ये मैंने देखा है सिर्फ बच्चे ही नहीं पेरेंट्स भी वहाँ पे मना कर देते हैं कि हाँ भाई नहीं उसके साथ मत खेलो, तो ये चीज गलत है.
1: मतलब हमें एक्सेप्टेंस एक तो लानी है,
2: सेंसिटिविटी जरूरी है इन चीजों के,
1: इंक्लूसिव होकर के चलना
2: जी
1: है, कि इंक्लूड एवरीबॉडी
2: जी हाँ.
1: सो मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया एंड काफी चीजें आज टेकअवेज रहे, बी इट बच्चों को कंट्रोल कैसे करना है, करना भी है एज अ पेरेंट बहुत सी चीजों में, लेकिन कैसे करना है वो आपने समझाया. देन आपने बहुत अच्छे से जो एक चीज हमें बताई कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं, रिएक्ट कितना करना है, कैसे करना है, कैसे उसे मोल्ड करना है. एंड टू ऑल द लिसनर्स जो सुन रहे हैं, जैसा मैम ने कहा कि रिएक्ट तुरंत मत करिए
2: जी,
1: बच्चे को अगर कुछ समझा रहे हैं तो विद अ रीजन समझाइए. अगर आप बोल रहे हैं कि बेटा उस तरफ
2: पहले
1: नहीं जाना, उसे
2: एक्सेप्टेंस मोड में लाने की जरूरत है. एक्सेप्टेंस मोड में अगर वो बच्चा आएगा तभी आपके कुछ भी
1: बातें सुन पाएगा,
2: बातें हैं तो वो सुनेगा समझेगा जी।
1: जी, तो हमेशा रीजन और लॉजिक के साथ उसे समझाएं। ये नहीं हो कि आपने उसको बोल दिया कि भाई उधर नहीं जाना है, अब उसका मन तो चाहेगा ना कि उधर क्यों नहीं जाना है। अच्छा, नहीं जाना है एक चीज, क्यों नहीं जाना,
2: नहीं जाना है वो जानना,
1: तो उसको जरूर बताएं कि उधर नहीं जाना है क्योंकि मे बी उधर प्रॉब्लम है, पानी भरा है, गड्ढा है, गिर सकते हो, चोट लग सकती है। तो आप इन चीजों के साथ में उसे रोकें, ये नहीं कि सिर्फ आधा आपने बात बोल दिया और आप अपना जजमेंट देके निकल गए। सो ये थी आज की हमारी टेक अवेज, एंड मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ से आए, जेपी इंटरनेशनल स्कूल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे इस रिक्वेजिशन को एक्सेप्ट किया और हमारे साथ कोलैब किया और इस रेडियो शो में आपने हमें बहुत सपोर्ट किया।
2: थैंक यू वेरी मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
1: थैंक यू, और इसी तरह से हम आपको एक्सपर्ट से मिलवाते रहेंगे और पेरेंटिंग की जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब लेकर के मैं शिखा यही मिलूंगी ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM। स्टे ट्यून्ड।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या हुआ बहू, इतनी खांसी?
2: माँ जी, मुझे टीबी है।
1: टीबी और छुपा कर रखा?
2: माँ जी, मुझे डर था कि कहीं आप मुझे वापस मायके न भेज दें।
1: जाना तो तुझे पड़ेगा, लेकिन मायके नहीं, डॉट सेंटर। टीबी कोई ऐसी बीमारी थोड़े ही है जो छुपाते फिरें।
3: टीबी छूने, साथ खाना खाने या रहने से नहीं फैलती। टीबी मरीज को जरूरत है आपके प्यार की और डॉट्स के पूरे कोर्स की। टीबी से दूर रहें, टीबी के मरीज से नहीं। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
4: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचाकर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नेड़े होके भी दूरियां रहिंदियां ने, कुछ मोहब्बतां अधूरियां रह के भी पूरियां रहिंदियां ने।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हां जी भाई कुट बड़ी पेंदी हुंदी जे फिर ना क्यों दस्या नहीं ते मुड़ के जे कित मेरे वांगू फड़े गए ना ते फिर कहंदे फिरोगे सॉरी अंकल सॉरी मैं ते ट्यूशन बारे पूछण आया सी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.

फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूँ और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियाँ पढ़ती हूँ, घर पर गेम्स खेलती हूँ। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसे, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
1: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
2: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे, सबकी साफ सफाई करते हैं।
3: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
1: बहुत

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। चलिए बात करते हैं हेल्थ की। जो कहते हैं सच कहते हैं कि हेल्थ है तो सब कुछ है। आप अक्सर जिम जाते हैं, जिम जाने से पहले किन किन खास बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी के विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, जिम अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले क्या आप खाएं क्या ना खाएं, इसी के विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। उन 5 फूड के विषय में जो आपकी बॉडी को लोहे जैसी मजबूत बॉडी बनाएंगे। जिम में ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें प्री वर्कआउट फूड से बड़े आसानी से मिल सकती है। इनसे सेहत भी अच्छी रहती है और आप खुद को फिट महसूस करते हैं। चलिए यही बात डिटेल में जानते हैं। जिम से पहले जरूर खाएं ये फूड, क्या है खास जानकारी, बात करते हैं। जी हाँ, हमें अपने डाइट पैटर्न में तब बदलाव की जरूरत होती है जब हम जिम जा रहे होते हैं। हालांकि जिम के वक्त शरीर को ज्यादा एनर्जी और स्टेमिना की जरूरत होती है, इसलिए जिम करने से पहले प्री वर्कआउट फूड्स को लेने की सलाह दी जाती है। ये फूड्स स्टेमिना भी बढ़ाते हैं और एनर्जी भी डबल करते हैं। प्री वर्कआउट फूड्स हमेशा हेल्दी और पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, जिससे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी शरीर को मिल सके। इससे एक्सरसाइज करने में भी अच्छे से मदद मिलती है, साथ ही मसल्स की रिकवरी भी सही तरीके से होती है। इतना ही नहीं, प्री वर्कआउट फूड्स में प्रोटीन और कार्ब्स का संतुलन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बीच का सही संतुलन होने से थकान नहीं होती। अगर आप भी जिम जाते हैं तो यहाँ हम आपको कुछ बेस्ट प्री वर्कआउट फूड्स के बारे में बता रहे हैं। ओट्स के विषय में बात करते हैं। ओट्स के बारे में तो हमने सुना ही है। फाइबर, कार्ब्स और अनगिनत पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सेहत के लिए बेहद अच्छा होता है। वर्कआउट से पहले ओट्स खाना फायदेमंद होता है। इससे लंबे समय तक शरीर में एनर्जी रहती है और अच्छे से एक्सरसाइज करने में मदद मिलती है। ओट्स में मौजूद विटामिन बी कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदल देता है। वर्कआउट करने से करीब आधे घंटे पहले अनप्रोसेस्ड ओट्स खाने की हिदायत दी जाती है। अब बात अंडे की। वर्कआउट करने से पहले अंडा खाना काफी फायदेमंद माना जाता है। इसमें अमीनो एसिड के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में होता है, जिससे वर्कआउट करने में ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप जिम जाने के 30 से 40 मिनट तक पहले 1 से 2 उबले अंडे या ऑमलेट खाते हैं तो एक्सरसाइज करने में ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। बात स्मूदी। स्मूदी पोषक तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। बेरी स्मूदी के साथ साथ ग्रीन स्मूदी भी काफी फायदेमंद होती है। इसे वर्कआउट से पहले लेने से कठिन एक्सरसाइज करने के लिए एनर्जी मिलती है। इसके अलावा ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, एवोकाडो, पत्तेदार सब्जियों की स्मूदी भी ट्राई कर सकते हैं। बात केला की। केले को भरपूर एनर्जी का स्रोत माना जाता है। इसके अलावा केले में कार्बोहाइड्रेट और पोटेशियम के भी अच्छे गुण होते हैं। इससे शरीर की नसों और मांसपेशियों को ठीक ढंग से काम करने में मदद मिलती है। केला खाने से डाइजेशन दुरुस्त रहता है। इतनी खूबियों के चलते केला बेस्ट प्री वर्कआउट फूड में से एक है। उबला हुआ चिकन। बात सामने ये आती है कि चिकन को डाइट का अहम हिस्सा माना जाता है। चिकन में मौजूद प्रोटीन शरीर के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। प्रोटीन मसल्स की रिकवरी में भी मदद करता है। थोड़ी सी काली मिर्च और स्वादानुसार नमक के साथ उबला हुआ चिकन एक अच्छा प्री वर्कआउट फूड में एक है। अब बात करते हैं एनर्जी बार की। जी हाँ, जिम में वर्कआउट करने वालों के पास एनर्जी बार जरूरी होना चाहिए। आप इसे अपने पास स्टोर करके रखने, केमिस्ट दुकान या फिर किसी सुपरमार्केट में इसे आराम से खरीद सकते हैं। एनर्जी से भरपूर एनर्जी बार में कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट, प्रोटीन और फाइबर भी मौजूद होता है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: म्यूजिक देसी ट्रैप सिंगर लिरिसिस्ट कंपोजर सिमरन कौर टडली टाइटल दिलबर जानी लेट्स लिसन टू इट ऑन सोनू शारदा 90.8 FM।

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
2: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: नमस्कार, मैं श्रुति कीर्ति वर्मा, जिला मलेरिया अधिकारी गौतम बुद्ध नगर। आज मैं सामुदायिक रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM के माध्यम से जागरूक करने के लिए फाइलेरिया के विषय पर बात कर रही हूँ। फाइलेरिया एक मच्छर जनित बीमारी है जिसे क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर यह बीमारी फैलती है। इसके लिए जो है एक पैरासाइट जिम्मेदार होता है, निमेटोड है वो, बेसिकली वाउचेरिया ब्रोंकोफ्टाई, जिसको ये कैरियर के रूप में मच्छर जो क्यूलेक्स काम करता है। और ये संक्रमित मच्छर अगर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो ये फाइलेरिया रोग हो जाता है। इसके बचाव के लिए बहुत ज़रूरी है, पहले तो मैं ये बताऊँगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर ये मच्छर किसी को काटता है तो पहली बात तो ये तुरंत इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, काफ़ी सालों के बाद में, लगभग 4 से 5 साल, कभी इससे भी ज़्यादा लंबा पीरियड लग जाता है, 7 ईयर्स भी कभी कभी देखने में आया है। तो काफ़ी सालों के बाद ये केसेस रिपोर्ट होते हैं। और हाथी पाँव, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि पैरों में सूजन, लिम्फ नोड्स से प्रभावित हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस की तरह इस तरह की बीमारियाँ देखने में आती हैं। तो हमें करना ये है कि हमें, अगर हम जितना बच सके मच्छरों से बचाव के लिए हमें कोशिश करनी होगी। जैसे डेंगू और मलेरिया का हम जागरूकता अभियान करते हैं, उसी तरह से हमें फाइलेरिया के लिए भी बचाव के लिए आप मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के आजकल मार्केट में कॉयल्स आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं। और बहुत अच्छा है कि कहीं भी अगर पानी स्टोर है तो अपने घरों के आसपास, अगर आप अपने घर में भी साफ़ सफाई रखते हैं, पानी कहीं भी जमा ना होने दें। ये हमें विशेष रूप से इस तरह की सावधानी लेकर के चलनी है। बेसिकली पाया ये जाता है कि जैसे बारिश स्टार्ट होती है और हमारा मलेरिया विभाग, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमारे जिला अधिकारी, हमारा पूरा प्रशासन और ख़ास करके हमारा पूरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं कि बारिश के बाद में जो पानी इकट्ठा होता है सड़कों पर, घरों के आसपास, छत के ऊपर, कई बार कंटेनर्स, खास करके जो शहरी इलाके हैं उनमें बहुत छोटे छोटे जो हमारे स्थान होते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो हमें ऐसे पानी को वहाँ से निकालना है। और अगर ऐसा पानी अगर हम नहीं निकाल सकते हैं तो वहाँ पर हमें एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाना है। तो नगर निगम, हमारे यहाँ नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, इन सब चीज़ों में सक्रिय रहते हैं। मलेरिया विभाग भी लगातार छिड़काव और फॉगिंग की व्यवस्था भी करता है। और अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो इन जगहों पे हम डीजल और केरोसिन का यूज़ कर सकते हैं, जला हुआ मोबिल ऑयल ऑयल और जला हुआ डीजल का भी प्रयोग करके हम लार्वा को रोक सकते हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, क्योंकि चाहे डेंगू का एडीज मच्छर हो, मलेरिया का एनाफिलीज हो या क्यूलेक्स हो, हमें इनकी ब्रीडिंग ही स्टॉप करके हम बीमारियों के संक्रमण को रोक सकते हैं। धन्यवाद।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: So Sharda.

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की, मैं आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है, ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
2: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
1: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन संबंध बनाती हैं, तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
2: ल्यूटियल चरण, ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, अस्तरों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है, जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: जन्म के समय लगे कमजोर, 14 दिन बाद भी वृद्धि हो कम, छूने पर लगता हो ठंडा या फिर लगता हो गरम, जन्म के पहले दिन या 14 दिन बाद भी आंख और शरीर हो पीला या शरीर दिखता हो नीला, सांस लेने में हो परेशानी, अगर दूध पीने में हो कठिनाई, सांस चलती हो तेज या धंसी लगती हो छाती, त्वचा पर हो छोटी फुंसियां 10 या फिर दिखे बड़ा फोड़ा, नवजात लगे सुस्त या बेहोश या पड़ता हो उसको दौरा, फूला हुआ लगे पेट, हो दस्त या हो रहा हो किसी अंग से रक्त स्त्राव, कटा फटा हो होंठ, चिपका हो तालू, सर में पड़ी हो गांठ, समझ लो बच्चे की है हालत खराब। इन लक्षणों का तुम लेना सारा ज्ञान, अच्छे से सब कर लो इनका ध्यान, देखते ही ये लक्षण 102 एम्बुलेंस बुलाना और अपने बच्चे को तुरंत SNCU ले जाना। आपका ख्याल ही आपके परिवार को स्वस्थ रखता है, इसीलिए ना करना इन लक्षणों को नजरअंदाज, क्योंकि फर्क पड़ता है।
3: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित

0: 4x6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।